0: सीखी हैं कि अगर कोई इस बिजनेस को इस तरह स्टार्ट करना चाहिए, अपने किसी भी पैशन को वो आगे लेकर चलना चाहिए, तो उन चीजों का खास तौर पर ख्याल रखें।
1: असल में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना, आपके पास आइडिया तो होता है, लेकिन जो सबसे मुश्किल चैलेंज है वो है प्लानिंग, आपकी आपका पेशेंस, आपकी मेहनत, आपकी कंसिस्टेंसी और इन्वेस्टमेंट, कि ये सारी चीज़ें अगर आपने अपने आइडिया को, अपने ख्वाब को पूरा करना है तो इन सारी चीज़ों को साथ लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। क्योंकि आइडिया तो आपके पास है, लेकिन जब तक उस आइडिया को आप अमली शक्ल देने के लिए, एक आपको प्रॉपर हिम्मत और हौसले की ज़रूरत है।
0: राइट, वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, सो विल कम बैक आफ्टर दिस वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड।
2: रिजुविनेटिंग मीडिया डे बाय डे, दिस इज सलाम मीडिया। When the perfect blend of stylish decor, exquisite halal cuisine, and warm hospitality come together, it could only mean Al Bayt Lodge, your true home away from home. Al Bayt is the ideal heaven for families, business people, and tourists, with its four-star family rooms and other luxurious facilities. Conveniently situated close to Port Elizabeth Airport, the beach, and other amenities, your stay will be truly unforgettable, as you'll be taking home lasting memories of the warm hospitality, the serenity and tranquility that Al Bayt has to offer. For reservations, call 041-583-6415 or visit www.albaytlodge.co.za.
3: Hey, Gulam.
4: Yeah?
3: Did I return your lawnmower last month?
4: No, bhai, you didn't.
3: Oh, no. Now what'll I do? I wanted to borrow it again, man.
5: With Randree Jewelers, you won't have to borrow or lend because the prices are so well trimmed on all gold and diamond jewelry. Alternatively, we could remake your old jewelry into a brilliant new design. Visit Randree Jewelers at 151 Stephen Slamini Road, Musgrave, Durban. Randree Jewelers, the family name you can trust.
6: Gaza needs your support more than ever. Homes have been shattered and families have lost everything. With your support, our teams are delivering clean water tankers, feeding the hungry, and assisting orphans who have no one left. Let us give Gaza whatever help we can. African Muslims Agency, empowering, educating, inspiring.
7: Are you banking with convenience, transparency, and flexibility? With Al Baraka Bank's transactional banking account, you can enjoy convenient everyday banking designed around your needs. Benefit from zero fees on point-of-sale transactions and manage your banking easily through Al Baraka's secure mobile banking app and internet banking platform. From everyday payments to managing your personal or business banking, Al Baraka makes banking simple, transparent, and convenient. Visit albaraka.co.za to learn more. Al Baraka, your partner bank. Al Baraka Bank Limited is an authorized financial services and credit provider.
2: Rejuvenating media day by day. This is Salam Media.
0: जी, वेलकम बैक प्रोग्राम मिड मॉर्निंग टॉक विद मरियम हाशमी। हमारे साथ मौजूद हैं सना उस्मान, और सना उस्मान हमें बता रही हैं कि माशाल्लाह उनका जो बिज़नेस है वो माशाल्लाह उन्होंने किस तरह से बिल्डअप किया। अच्छा सना, एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग हेजिटेट करते हैं, घबराते हैं न्यू चीज़ को करने में और स्पेशली अपने पैशन को, क्योंकि समटाइम ये होता है कि जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, जब आप उस पैशन, आपका कोई इंटरेस्ट है, आपका कोई पैशन है, आपकी कोई चीज़ है, आप उससे कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस ऐसे आ जाते हैं लाइफ में कि जिससे वो बिल्कुल गिव अप कर जाते हैं अपने शौक से भी और अपने काम से भी। तो आपको कुछ ऐसा कभी जिंदगी में फील हुआ कि नहीं, ये मेरा जो पैशन है इसने मुझे जिंदगी में कुछ खास वो दिया नहीं, इससे मुझे वो जो मैं चाहती थी आउटकम वो मिला नहीं, वो आया नहीं, तो आपने कभी ऐसा गिव अप सोच आई है आपकी?
1: देखिए, बिजनेस तो एक ना हर दिन के लिए एक नया लेसन देता है आपको। आपको कभी भी चीजें कभी भी आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं होती, मतलब कभी आपके फैसले मुश्किल हो जाते हैं, कभी आपके ऐसे मौके पे खड़े हो जाते हैं कि जहाँ पे आपने डिसीजन लेना वो सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हर चीज आपके मुताबिक नहीं होती, लेकिन आपने अपने फेलियर को अपना फेलियर नहीं समझना, उसको एक नया सबक समझ के चलना है। मेरी लाइफ में भी इस तरह के बड़ी चीजें आई हैं, अप्स एंड डाउन आती हैं, आ रही हैं, लेकिन यही वाली बात के आपके

0: अंदर का हौसला, हिम्मत उसको बूस्ट अप करता है, और कि नहीं, हमने इस चैलेंज को फेस करना है और हमने अपने पाँव पे खड़े होके अपने बिजनेस को, अपने काम को और अपने ख्वाब को पूरा करना है। तो ये चीज़ें तो साथ साथ चलती रहती है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ।
1: सही। तो अच्छा सना, आपने चैलेंज की बात की है, अच्छा मैं चाहूँगी आप अपने थोड़े से आर्ट पीसीज के बारे में भी लोगों को बताएं ज़रा। आप थोड़ा सा ज़रा अपने कैफ़े की तरफ ज़रा रुख कीजिए, मैं थोड़े से आपके आर्ट पीसीज के बारे में बात करना चाहूँगी कि आप में क्या जो है आप बनाती हैं, किस तरह से आपकी थाट्स हैं, आप अपने टेबल्स जो भी आपकी जो है चीज़ें, आप ज़रूर हमें दिखाइए, हमारे व्यूअर्स को, हमारे लोगों को, ताकि जो है वो देख सकें और अंदाज़ा कर सकें कि अगर आप इस तरह की किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए कितनी आसानियाँ हैं अगर आप कर सकें।
0: सबसे पहले तो आप ये एक वॉल हैंगिंग देख रहे हैं जो बिल्कुल मेरे पीछे लगी हुई है,
1: राइट?
0: द वॉल हैंगिंग, ठीक है, इसमें थोड़ा सूफी टच दिया हुआ है, थोड़ी कैलीग्राफी दी हुई है, थोड़ा सा इसमें जरा रूहानियत वाला टच दिया हुआ है। फिर साथ ही हम इसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये टेबल राइजर है, देखिए इसको हम एज अ टेबल के लिए भी यूज कर सकते हैं, ये सब हैंड पेंटेड है, इसके ऊपर साथ लगा हुआ है। तो इसी तरह ये मेरे पीछे जितना भी आप देखना चाहें देखेंगे, यहाँ पे बहुत सी हाउस होल्ड चीजें लगी हुई हैं, जैसे जस्ट लाइक दिस इज अ टिश्यू बॉक्सेस, ठीक है, ये टिश्यू बॉक्सेस हैं, ये वुडन ट्रेज हैं, वॉल हैंगिंग है। इसमें ये है कि मैं आपको ये आइडिया देती हूँ कि खवातीन को शौक होता है घरों को सजाने का, ठीक है, वो अपने घर को सजाना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उनको ये भी होता है कि उनको अपनी पुरानी और अपनी जहेज की चीजों से, अपनी अम्मियों की चीजों से बड़ी मोहब्बत होती है। टाइम बाय टाइम सम टाइम के बाद चीजें अपनी रौनक, अपनी चमक खो बैठती हैं। तो जो मेरा विजन है वो ये है कि अगर आपने अपने ख्वातीन जो है या कोई भी, आप अपने आर्ट को वेस्ट मत करें, अपने सामान को वेस्ट मत करें, हम पुराने से पुराने फर्नीचर को भी आपको नया करके दिखा सकते हैं कि जी आपने अपनी चीज जाया नहीं करनी, आप उसको रिन्यू कर सकते हैं, आप उसको न्यू पेंट कर सकते हैं, आप उसको नया रंग, नई जिंदगी उसके अंदर फूंक सकते हैं।
1: ये बेहतरीन है, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात किया, क्योंकि जब हम अपनी पुरानी चीज़ों की बात करते हैं, अपने अम्मी की कोई प्यारी चीज़ है जो हमारे दिल से बड़ी करीब है और हम उससे जो है कनेक्ट होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारा दिल जो है खुश हो जाता है, हम उसको कहीं और वेस्ट नहीं करना चाहते या उसको कहीं और रखना नहीं चाहते, तो उसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल है जो आपने बताया। अच्छा सना, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके, आपके माइंड में क्या है? हमारे पास बड़ा शॉर्ट टाइम रह गया है, आपके साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही है, आप ज़रा बताइएगा फ्यूचर प्लान्स आपके कैफ़े के बारे में आपके क्या हैं?
0: कैफे के बारे में यही है कि ये एक जस्ट एक कैफे ना रहे, ये एक रिकग्नाइज्ड, मैं इसको क्रिएटिव प्लेटफॉर्म बनाना चाहती हूँ जहाँ पे फूड कल्चर बिजनेस और कम्युनिटी एक साथ आए। मुस्तकबिल में मेरा यही है कि यहाँ पे क्रिएटिव इवेंट्स होते हैं, एग्जीबिशन होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं और खवातीन नौजवान सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं, अपने आर्ट को शोकेस करें यहाँ पे। और सबसे बड़ा ख्वाब मेरा यही है कि अगर यहाँ आर्ट का लोग नाम सुने तो उनके पास सिर्फ एक कैफे ना आए, उनके पास अपॉर्चुनिटी, क्रिएटिविटी, क्वालिटी, इंस्पिरेशन का तस्वुर उनके जहन में आए। और शायद यही पूरे सफर की सबसे खूबसूरत बात होगी कि हम एक बिजनेस बिल्ड ना करें बल्कि हम एक लेगेसी बनाएं जो दूसरों को भी अपने ख्वाब पूरे करने के लिए इंस्पिरेशन दे।
1: ज़बरदस्त सना, ये बहुत अच्छा मैसेज था और बहुत अच्छी आपके साथ हमारी गुफ्तगू रही है। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारी न्यू जनरेशन है, जो हमारे लोग हैं जो अपना नया कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप अपने काम में स्किल्ड हों, आपको जो है इस तरह के, अगर आप आर्ट वर्क में इंटरेस्टेड हैं, और जैसे सना ने बात की इनके कैफ़े में कि बहुत सारी वर्कशॉप्स भी होती हैं, उन वर्कशॉप्स पर आप उनको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, कुछ नया सीखिए, ताकि जो है रंगों से न सिर्फ आप खुश हों बल्कि रंगों से आपको खेलना भी आना चाहिए, आप कुछ ना कुछ उससे ज़रूर क्रिएटिव बना सकते हैं, क्योंकि अल्लाह सुभान व तआला की बहुत सारी नेमतें हैं जो रंगों से भरी हुई हैं। हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, माशाल्लाह बहुत सारी ग्रीनरी है, ग्रीन कलर है, रेड कलर है, येलो कलर है, मतलब आप जितना रेनबो के कलर से भी आप निकालें चीज़ें, तो बहुत सारी ऐसी ज़िंदगी है जो रंगों से भर जाती है, और ज़िंदगी में रंगीनियाँ भी लोगों के अच्छे अखलाक से और अच्छी चीज़ों से, सदका जारिया से आती है। तो आप अपने इस काम को सना जारी रखिएगा, और हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, और उम्मीद है कि आप मुस्तकबिल में ज़रूर कामयाब होंगी और इसी तरह अपना इल्म आप सीखें और सिखाएं और लोगों के लिए जो है वो राह हिदायत वो बनती चली जाएं। बहुत शुक्रिया आपके इस साथ का, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।
0: जी
1: थैंक यू वेरी मच। ये थी हमारे साथ सना उस्मान, और सना उस्मान जो है शी जस्ट मेंशन्ड कि किस तरह उन्होंने अपने इस बिजनेस का आगाज़ किया, किस तरह उन्होंने जनाब उन चैलेंजेस को साइड पे रखा, अपने पैशन को उन्होंने आगे रखा और अपनी ज़िंदगी को और दूसरों की ज़िंदगी को आसान बनाने की एक राह जो है वो उन्होंने हमवार की। हमारे साथ रहेगा, टाइम फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक के बाद आते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं अपने न्यू गेस्ट के साथ। Stay tuned with Salaam Media.
2: Connect and stay ahead with Salaam Media. This is Salaam Media coming to you live from South Africa.
3: Shimmer, sparkle, captivate. Nothing less than a masterpiece. Droplets of gold inspires precious design. Platinum bursts with intricate freshness, and every pure diamond becomes more than just a girl's best friend. Voda Gold Gem Jewelers, where timeless dreams become a reality. Come to us. We tailor-make designer gold, platinum, and diamond jewelry. Trade in or remodel your old gold. Clad yourself with classy name-branded watches. We offer insurance valuation and Freezer card calculation. Visit us at 534 Ridge Road, Overport, or call 031-208-9142. Voda Gold Gem Jewelers, manufacturers of fine gold and diamond jewelry.
4: Kids these days are smart, and when you're competing for their attention against their smartphones, you need to make smart choices, like using Sunfoil Triple Refined Pure Sunflower Oil in every meal you make. It's naturally cholesterol-free and approved by the Heart and Stroke Foundation as part of a balanced eating plan. So whether you're cooking, frying, or baking, you get the great-tasting results that'll get their attention faster than the latest app. And if that doesn't work, change the Wi-Fi password. Sunfoil. Now we're cooking.
5: When you give water, you bring life to drought-affected communities, providing fresh water for drinking, cleaning, and growing. Your support helps Islamic Relief implement water, sanitation, and hygiene projects, providing clean water to communities around the world. Donate now to Islamic Relief.
6: Right now, in lands many of us feel deeply connected to, a mother holds a sick child, worried and fearful, as she knows her nearest hospital has been destroyed. This is the mother we go beyond borders to reach. Doctors Without Borders is there in the world's toughest places. We go where others can't or won't, and we go immediately. When you give to us, we go even further. Visit msf.org.za/sadaqa, that's SADAQAH, and support Doctors Without Borders today. Doctors Without Borders, we go there.

0: Listen to something fresh. Listen to Salam Media.
1: जी, वेलकम बैक प्रोग्राम मिड मॉर्निंग टॉक विद मरियम हाशमी में आपको खुश आमदीद कहते हैं. वी वेलकम यू एंड उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा. अपना भी पार्टिसिपेशन ज़रूर दीजिएगा, हमें बताइएगा कि आपकी जो है आपका फीडबैक क्या है और आप भी क्या सुनना चाहते हैं. जी, हमारी दूसरी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं. यूके से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, लंदन में होती हैं. अच्छा, इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन जो है वो देना चाहूँगी, क्योंकि ये इनकी बहुत सारी काविशें हैं, बहुत सारी इनकी जो अचीवमेंट्स हैं जो मैं उसमें से लिटिल बिट थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. जैसे कि फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिज्म में इनका बहुत सारा एक्सपीरियंस है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है. इनके कम्युनिटी डेवलपमेंट कंसल्टेंट के तौर पर ये काम करती हैं. इसके अलावा पीपल्स पार्टी यूके की ये वाइस प्रेसिडेंट हैं. जी हाँ, उनकी खदमात जो है वो अंजाम दे रही हैं, पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिकल चीज़ों को बहुत गहराई से देखती हैं और अपनी कौम के लिए बहुत बेहतरीन जो है वो करने की कोशिश करती हैं. जाहिर है जब आप एक स्टेज पे होते हैं या आप एक ओहदे पे होते हैं तो आपको क्या होता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कौम आपके साथ. तो ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती हैं, अच्छे से अच्छा जो है वो करना चाहती हैं अपनी कौम के लिए. तो मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहूँगी, मिलते हैं शगुफ्ता नसरीन से. अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता जी.
2: वालेकुम सलाम मरियम, थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी ऑन योर प्रोग्राम एंड यू आर अ वंडरफुल होस्ट एनीवे सो वी ऑल नो यू.
1: जी, बट आप ही एक वंडरफुल पर्सनैलिटी हैं और डेफिनेटली कि आपको आज हमारे जोहान्सबर्ग में ज्वाइन करके आपको शगुफ्ता जी कैसा लग रहा है?
2: Absolutely wonderful, absolutely wonderful. I mean, local तो हम आपको पता है, local या पाकिस्तानी मीडिया में, UK मीडिया में अक्सर जाना होता है, लेकिन जोहान्सबर्ग इट्स
1: जी एग्जैक्टली. तो ये मैं चाहती थी बिल्कुल कि आपकी आवाज़, आपका मैसेज जो है वो सिर्फ यूके तक ही महदूद ना रहे. आप माशाल्लाह, आपको दुनिया जो है आपके पर्सपेक्टिव को समझे और आपके मैसेज को समझे. अच्छा शगुफ्ता जी, स्टार्ट करते हैं आपसे. माशाल्लाह आपकी कम्युनिटी लीडरशिप माशाल्लाह आप में बहुत ज़्यादा, आप कंसल्टेंट हैं और उसमें आपकी बहुत ज़्यादा स्किल्स भी हैं और बहुत एक्सपीरियंस भी है. मैं पूछना चाहूँगी, आप क्या समझती हैं कि जो कम्युनिटी है उसकी असल डेफिनेशन क्या है, असल पहचान क्या है? क्योंकि जब हम इन फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, अपनी कम्युनिटी की पहचान बनाना कितना डिफिकल्ट है और फिर उसकी पहचान के साथ उसको मेंटेन करना, ये कितना मुश्किल रहा होगा आपके लिए?
2: देखिए मरियम, हम सब जो है वो जाहिर बात है एक माइग्रेंट कम्युनिटी से हमारा तालुक है, पाकिस्तानी डायस्पोरा से.
1: जी,
2: तो आप कहते हैं कम्युनिटी की पहचान क्या है. बेसिकली जब हम अपने मुल्क से बाहर जाते हैं या अपनी कौम से बाहर निकलते हैं
1: जी,
2: तो हम उनके सफीर होते हैं और हमें उनको रिप्रेजेंट, अपने मुल्क को, अपने फेथ को, अपनी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना होता है
1: जी.
2: तो एक कम्युनिटी की इससे बेहतरीन पहचान नहीं है कि वो अपनी बेस्ट ऑफ द वैल्यूज जो है उसको पोर्ट्रे करे जब दूसरे लोगों के साथ जाए, और अपने फेथ, अपने कल्चर का पॉजिटिव फेस जो है वो लेके जाना होता है आपको और उसको इम्प्रूव करना होता है. तो आई थिंक कि ये हमें अपनी पहचान बनाने के लिए किसी भी जगह पे, किसी भी जगह जहाँ कम्युनिटीज माइग्रेट करती हैं, सबसे पहले उन्हें अपनी जो वैल्यूज में उनकी बेस्ट वैल्यूज हैं
1: जी,
2: वो रिप्रेजेंट करनी चाहिए ताकि जो आपका होस्ट कम्युनिटी है वो आपको समझ सके, वो आपके साथ इंटरेक्ट कर सके.
1: बिल्कुल.
2: और अगर आप नहीं इंटरेक्ट करेंगे और नहीं अपनी वैल्यूज की बात करेंगे तो ऑब्वियसली आप एक नई सोसाइटी में अपनी पहचान बनाने में कभी कामयाब नहीं हो सकते.
1: बिल्कुल बेहतरीन.
2: तो, यहाँ हमें जो है ना ये चीजें हमारे लिए बड़ी जरूरी हैं. जब हम कोई भी जाता है, जब माइग्रेशन करता है, तो पाकिस्तानी कम्युनिटी जाहिर बात है आई रिप्रेजेंट ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी, तो ये चीजें मैंने देखी और अब तो अबाउट 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है जिसकी अभी तक हम स्ट्रगल कर रहे हैं, आप भी जानते हैं
1: जी. लेकिन ये है कि आप ज़ाहिर हर कुछ तो 100% नहीं होता, कहीं ज़ाहिर अप एंड डाउन होता रहता है, लेकिन इन अप एंड डाउन में आपने अपनी इस चैलेंजिंग पर्सनालिटी को, अपने काम को जारी रखा, चैलेंजेस को फेस किया. अच्छा शगुफ्ता जी, आजकल की कम्युनिटीज़ में सबसे अहम ज़रूरत आप क्या समझती हैं कि डेवलपमेंट के लिए, जो हम ओवरसीज़ ब्रिटिश पाकिस्तानी आप काम करिए उनके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है और उसमें कम्युनिटी का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए?
2: देखिए मरियम जी, सारी चीज तो बेस ही कम्युनिटी पे होती है और लोगों पे बेस होती है.
1: एग्जैक्टली.
2: और हमारा एक देखिए, अगर मैं प्री 60 या 63 से आपको लेके आऊं, उस वक्त हमारे लोग आए थे एक वर्किंग पर्सपेक्टिव के साथ कि हमने जाना है, थोड़ा काम करना है, थोड़े पैसे बनाने हैं और वापस अपने वतन चले जाना है. तो उस वक्त उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि वो यहाँ रहेंगे, यहाँ पे उनको एंगेजमेंट करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, और उनकी अपनी मुश्किल थी. हमें उन बुजुर्गों को सलाम करना चाहिए, आज की जनरेशन को बताना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने किस तरह इन मुल्कों में आके मेहनत की, कितने सख्त हालात में. अगर आप अब के हालात देखें, जहाँ इतनी लेजिस्लेशन हुई है, इतने लॉज हैं, और फिर भी इस वक्त भी हम डिस्क्रिमिनेशन और इस्लामोफोबिया और तरह की चीजें, हेट स्पीच सब फेस कर रहे हैं. हमारे बच्चे भी कह रहे हैं जो कि ब्रिटिश बोर्न है, तो आप सोचे प्री 60s क्या होता होगा. लेकिन हमारे बुजुर्गों ने बड़ी ही जांफिशानी के साथ, हार्ड वर्क के साथ उन्होंने मेहनत की, अपना मुकाम बनाया. और जब उनके बच्चे जारी बात आए और वो यहाँ सेटल हो गए, तो अब वापस वापसी का रास्ता जो था वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता गया. तो वो उस वक्त की जरूरत थी, काम करना, अपने काम से काम रखना, अपने आप को सेफ रखना, इस सोसाइटी में अपनी जगह बनाना. लेकिन अब चीजें जो है शिफ्ट हो गई. आप देखिए ना, 40-50 ईयर्स के बाद अब क्या है कि अब हमारे बच्चे जो है, वी आर ब्रिटिश पाकिस्तानी, हमारे बच्चे जो है वो ब्रिटिश बोर्न पाकिस्तानी है.
1: right.
2: अब हमारी जरूरतें चेंज हो गई. अब सिर्फ जॉब करना, पैसे बनाना, अपने मुल्क वापस जाना या कुछ इस तरह की चीजों से हम आगे बढ़ गए. अब हमारी जरूरत ये है, हमारे लोगों को बड़ी ही कॉन्शियसली ये चीज सोचनी है कि हमारा टाइम ऑलमोस्ट गुजर चुका.
1: right.
2: और हमने एक रोल प्ले किया, लेकिन इससे फर्दर हमारे बच्चों का फ्यूचर है, जो हमारी इन कमिंग जनरेशंस हैं, उनके लिए हम एज ए बुजुर्ग क्या छोड़ के जा रहे हैं. तो उसमें हमारा इससे सबसे बड़ा जो रोल आता है वो आता है कम्युनिटी एंगेजमेंट, और उसके साथ यहाँ की जो वैल्यूज हैं उनके साथ इंटरेक्ट करना, अपनी वैल्यूज को शेयर करना, अपने फेथ की वैल्यूज को शेयर करना. लेकिन सबसे बड़ी चीज, चूंकि इन कंट्रीज में बहुत अच्छा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, बहुत सारी हर चीज के अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन यहाँ जो मोस्ट सक्सेसफुल सिस्टम है गवर्नेंस का वो है डेमोक्रेसी, वो थ्रू पॉलिटिक्स. तो हमें पॉलिटिक्स में पॉजिटिवली और हिस्सा भी लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले उसको अंडरस्टैंड भी कर, एजुकेशन है तो ले. मैं ये नहीं कहती कि सब आज ही इलेक्शन में खड़े हो जो, सब आज ही मीटिंग्स में चले जाओ, मगर मैं कहती हूँ कि आप सिस्टम को समझें और अपने बच्चों के अंदर जो है ना, आप इसके लिए एक पॉजिटिव फीलिंग पैदा करें. जब हमारे, चूंकि हमारा थोड़ा कल्चर भी है बैक होम में, पॉलिटिक्स भी आपको पता है थोड़ी गड़मड़ हुई हुई है, तो हम वही चीज, वही जुमला यहाँ कहते हैं कि पॉलिटिक्स तो गंदी है, पॉलिटिक्स तो करप्ट है, पॉलिटिक्स तो खराब है. पॉलिटिक्स खराब नहीं है, ये सिस्टम खराब नहीं है, लोग आते और जाते रहते हैं. प्लीज इन दो चीजों में फर्क करें.
1: अच्छा जी, ये आपने बड़ी प्यारी बात किया. यहाँ पर ही मैं एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी कि जिस दौर की आप बात करें, आज भी पॉलिटिक्स में जाना विमेन के लिए बहुत चैलेंजिंग है. जिस दौर में आपने ज्वाइन किया, आपको कितनी डिफिकल्टी आई होगी, कितनी मुश्किलात आई होंगी, कुछ उसके बारे में कहना चाहेंगी?
2: जी बिल्कुल. देखें, डिफिकल्टी हालांकि बहुत सेट्स में होती है, आपको पता है क्लास सिस्टम्स होते हैं, मैन को भी आती है, लेकिन विमेन को ज्यादा आती है. उसके में हमेशा सब कहते हैं कि आप औरत की क्यों बात करते हैं. तो मैं एक बात बड़ी वाजह करना चाहती, जब मैं एजुकेशन कर रही थी या मैं स्ट्रगल थी या मैं एक पोलिटिकल पर्सन के तौर पर मेरी स्ट्रगल थी, तो मैंने कभी सेटअप नहीं किया था कि मैं सिर्फ औरतों के लिए बात करूंगी. लेकिन जब मैंने औरतों का ज्यादा इस्तेहसाल होते देखा, मतलब कंपैरेटिवली जब आप बात करते हो तो कंपैरेटिवली करते हो, तो ऐसा नहीं है कि हर औरत को प्रॉब्लम है या हर आदमी को, लेकिन बिटवीन मैन एंड वुमेन विच सेक्शन इज अफेक्टेड मोर. सो वो मैंने देखा कि वुमेन हर लेवल पे जो थी वो स्ट्रगल कर रही थी. हाँ, अगर आप बहुत ही प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड है आपका, तो ऑब्वियसली यू डोंट गेट दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ. मुझे अपने लिए भी ये है कि जब मैंने शुरू की, और मैं बहुत ही दुनिया की खुशकिस्मत तरीन यंगस्टर्स थी कि मुझे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का साथ मिला. जैसे ही मैंने पॉलिटिक्स में आंखें खोली, तो मैंने उन्हीं की पार्टी ज्वाइन की, उन्हीं की स्टूडेंट मूवमेंट का मैं हिस्सा बनी. और फिर वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्हीं के पेपर से, उनके जो फादर का पेपर उन्होंने शुरू किया था मुसावात, डेली मुसावात, उसी से मेरा जर्नलिज्म का आगाज हुआ। मैं पार्लियामेंट और सेनेट कवर करती थी, तो आई वॉज लिटरली विद बीबी एज मैनी आवर्स शी वॉज देयर।
1: क्या बात है।
2: तो
1: शगुफ्ता जी, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में भी आई, अब आपने जर्नलिज्म में भी आई, प्रेशर कितना ज्यादा था? क्योंकि जर्नलिस्ट पे तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, और फेयर जर्नलिज्म करना जो है वो भी एक जरूरी चीज है। कैसे मैनेज किया आपने इन सबको?
2: मैनेज ऐसे किया कि देखिए, हम एक हमारा जो एक आपको पता जर्नलिज्म में भी ब्रांचेज है, तो हम हमेशा लेफ्ट के जर्नलिस्ट रहे, तो लेफ्ट का जर्नलिस्ट जो था वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को सपोर्ट कर रहा था, सो आई वाज लकी इन दैट सेंस। एक तो पेपर पार्टी से अटैच था उस वक्त, और दूसरा चूंकि मेरे जो उस्ताद हैं मुन्नू भाई, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, और बहुत सारे नुसरत जावेद साहब माशाल्लाह, ये हम छोटे छोटे थे और इन्होंने हमें गाइड किया, वैल्यूज दी और इतने एथिक्स दिए। आप यकीन करें कि आजकल जाहिर बात है चीजों में चेंज आती है, लेकिन बड़ी तकलीफ होती है कि कैसे येलो ब्लैक पता नहीं कौन कौन सा जर्नलिज्म हो रहा है, और जिनका जर्नलिज्म से ताल्लुक भी नहीं है उनको जर्नलिस्ट बना के प्रेजेंट किया जाता है, जो कि लेकिन आप एक डॉक्टर, एक इंसान जब तक वो प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करता आप उसको डॉक्टर नहीं कहते।
1: Exactly.
2: इस कंट्री में आप 10-10 कोर्सेज और डिग्री नहीं करते तो आप टीचर नहीं बनते।
1: लेकिन शगुफ्ता जी, पैशन भी तो देखे ना, हर बंदा जो सीखना चाहता है आप उसका लर्निंग प्रोसेस भी, तो वो अगर सीख रहे हैं तो यही हमारी कम्युनिटी की खास बात है, हमारे लोगों की, पाकिस्तानियों की, कि वो बहुत ज्यादा सीखते हैं, हर चीज वो बड़े अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। अच्छा शगुफ्ता जी, बड़ा खूबसूरत एक क्वेश्चन है, यंग जनरेशन है, हमने पाकिस्तान को की मोहब्बत उनके दिलों में डालनी है, जाहिर है उनकी ब्रॉटअप आपने माशाल्लाह वहाँ पे की है, आप माशाल्लाह पूरा लीड कर रही हैं, तो आपसे मैं पूछना चाहूंगी कोई ऐसी एडवाइस आप प्लीज पेरेंट्स को जरूर दीजिए कि किस तरह वो अपने मुल्क से मोहब्बत, क्योंकि अगर आपने बात करते हैं ब्रिटिश बॉर्न पाकिस्तानी, तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा जरा पाकिस्तान से जरा, क्योंकि उनको ये होगा कि हमारे पेरेंट्स पाकिस्तान से हैं, हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान की मोहब्बत कैसे डालें उनके दिल में?
2: देखिए मरियम, मैं चूंकि हर बात की मेरे पास एक शुरुआत होती है, तो मैं शुरुआत से बताती हूँ कि कोई भी दरख्त अपनी जड़ों के बगैर ऊपर नहीं जाता।
1: क्या बात,
2: वही रह जाएगा या जल जाएगा।
1: सही।
2: आपके बच्चों की जो फाउंडेशन है ना, फख्रिया तौर पे आप कहेंगे कि यो मदरलैंड इज पाकिस्तान। आप उनके दिल में उनकी मोहब्बत इंस्टॉल करें, पॉलिटिक्स पार्टी बाजी को छोड़ दें, पार्टियां आती और जाती रहती हैं, ये मैं आप पहले भी अर्ज करती हूँ, मैं यूके में भी लोगों से कहती हूँ कि पार्टी सिस्टम को तबाह ना करो, लीडर्स आते और जाते रहते हैं।
1: बिल्कुल।
2: इसी तरह मैं पाकिस्तानी जो हमारा डायस्पोरा, उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ठीक है, मेरी भी जाहिर बात है जब वोट होता है तो आपकी एफिलिएशन भी होती
1: Exactly.
2: है, हर इंसान का वोट है, चाहे मैं जर्नलिस्ट हूँ स्टिल वोट तो है ना मेरा।
1: बिल्कुल।
2: मैंने जिसको वोट देना, ऑब्वियसली आई हैव पर्सनल एफिलिएशन या मुझे अच्छा लगती है वो पार्टी, लेकिन पार्टी से कतई नजर, क्योंकि आपके बच्चों ने वहां जाके वोट नहीं डाला, उनके अंदर आप मुल्क में पार्टी की वजह से तनफर पैदा ना करें। हाँ। आप उनके दिल में मादरे वतन, वो आपकी माँ है, मैंने कहा ना हम जहां भी चले जाएं हम ब्रिटिश पाकिस्तानी, सो आई लव ब्रिटेन। ये यूके ने मुझे एक्सेप्ट किया है तो मैं यूके को दिल से एक्सेप्ट करती
1: हूं। क्या बात है,
2: अपना अपना मुल्क।
1: लेकिन
2: मेरी माँ जो है
1: वो
2: मेरी जड़ें वहां पे
1: पाकिस्तान,
2: मेरा जो जड़ है वो पाकिस्तान में, और मेरे बच्चों की, अब आप देखिए मरियम, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहती हूँ कि आज से 1000 साल के बाद भी जो आपकी फ्यूचर जनरेशन है वो फॉर्म पे ब्रिटिश पाकिस्तानी लिखेगी एज आइडेंटिटी।
1: जबरदस्त।
2: सो यू विल नेवर सेपरेट पाकिस्तान फ्रॉम योर फैमिलीज और फ्रॉम योर
1: शगुफ्ता जी, आपसे अब आपके पर्सनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लिखती भी हैं, जरा उस पर रोशनी डालिए कि आप माशाल्लाह कुछ सुनाना चाहें, कुछ कहना चाहें, यूथ को कोई मैसेज देना चाहें, और शौक भी बताइएगा कि कहाँ से हुआ, अम्मी से हुआ, अबू से हुआ, किसी फैमिली मेंबर से आपको शौक हुआ लिखने का, और क्या लिखती हैं?
2: देखिए मेरे पेरेंट्स चूंकि उनकी ये जो दुनिया वाली स्कूलिंग नहीं थी, लेकिन अल्लाह की तरफ से उनको बहुत ज्यादा नॉलेज थी जो कि हमारे बुजुर्गों की एक मिरास रही है, तो बहुत मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि एजुकेशन जो है वो बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे मैं ग्रो अप हुई, जैसे आपको मैंने बताया कि मोहतरम मुन्नू भाई बहुत बड़ा नाम है जर्नलिज्म का, पोएट्री का, उनसे हुई और मेरा सबसे पहला जो मैंने इंटरव्यू किया था वो प्रवीण शाकिर साहिबा जो कि बड़े सगीर की पाकिस्तान की बहुत बड़ी फीमेल पोइट्रेस रही हैं फिर वो जारी बात है उनकी एक हादसे में डेथ हो गई।
1: शगुफ्ता जी हम इंशाल्लाह उनसे ही बात की शुरुआत करेंगे। टाइम हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का। विल सी यू आफ्टर जस्ट अ वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड विद सलाम मीडिया फ्रॉम जोहान्सबर्ग।
2: थैंक यू।
3: The following is a paid political advertisement by the Al-Jama'a Political Party.
4: Regularization and the alternative political party for South Africa is the Al-Jama'a effect. Roads will be fixed, refuse will be removed, and personal safety in your homes, streets, parks, and pathways to the local shops and shopping malls will be our top priority. Al-Jama'a aim to regularize shack dwellers by giving them land tenure. Regularize water and electricity supply by making it a reliable source. Vote for good governance, accelerated service delivery, excellence, and the best of breed of councillors, mayors, and mayoral committee members. That is the Al-Jama'a effect. South Africa's alternative political party, the Al-Jama'a effect.
3: That was a paid political advertisement by the Al-Jama'a political party.
5: Discover the Africa of your dreams and surround yourself with her spectacular beauty. Relax beneath her serene sunsets and explore wildlife at its natural best. It's where the pride of Africa comes together. The Kwantu Private Game Reserve. Get to know the Big Five or cruise on an elephant safari game drive. Interact with lion and tiger cubs and enjoy world-class halal cuisine while we pamper you during your five-star stay. Indulge in the true African experience. For reservations, call now on 042-203-1400 or visit kwantu.co.za. The Kwantu Private Game Reserve, the place of gathering.
6: There are over 200 million orphans globally. We can't help all of them, but what if we each helped just one? The El Imdad Foundation now gives you an opportunity to help just one orphan from Syria or Palestine. For just 500 Rand per month, you can help safeguard the dignity of an orphan by assisting them with basic needs such as food, clothing, shelter, medical care, and attention. Our orphan sponsorship program allows you to track the progress of your orphan through regular feedback. Make a difference in the life of an orphan today. Visit alimdad.com or call 0861 786243 for more information.
7: World-class financial services only at Safi Global, your financial partner. If you are looking for Islamic, Sharia and ethical financial products, look no further. Sapphire Global offers a wide range of financial service offerings from short-term to life and investments. A full service center with all financial requirements under one brand. Our highly skilled and experienced consultants are ready to help protect your financial future. Contact us on 041-001-0184 or visit our website on www.sapphireglobalfs.com. Sapphire Global is an authorized financial services provider.
8: Tonight, a child in a shack will try to sleep through the cold. No heating, no insulation, just thin walls and a biting cold. African Muslims Agency is on the ground, reaching families in informal settlements across South Africa with blankets and winter essentials. Help us spread warmth this winter. For 180 Rand, give a blanket. For 360 Rand, a full winter pack. One gift, one less night in the cold. Africa Muslims Agency. Empowering, educating, inspiring.
0: It's a new beginning. It's a new era. Salam Media. Humanitarian journalism.
1: जी वेलकम बैक करते हैं आपको मिड मॉर्निंग टॉक विद मरियम हाशमी लाइव फ्रॉम जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। जी हाँ टाइम हुआ चाहता है 11:53 और हमारे साथ मौजूद हैं शगुफ्ता नसरीन लंदन से। और जी शगुफ्ता जी आपसे बात हम जारी रखेंगे। बात हो रही थी आपकी शायरी की, आपके कलाम की, तो ज़रा बताइएगा माशाल्लाह आपकी फेवरेट जो थी प्रवीण शाकर, उनको कौन नहीं जानता, उनकी शायरी को कौन, हर दिल को छू जाती है उनकी शायरी, तो आप उनसे इम्प्रेस हुई और आपने खुद लिखना शुरू किया, तो आप ज़रा कुछ सुनाइए हमारे देखने और सुनने वालों को।
2: थैंक यू मरियम। जाहिर बात है मैं बेसिकली तो एक राइटर हूँ
1: जी जी
2: तो पोएट्री हमेशा पसंद रही, मैसेज अच्छा लगता रहा, बहुत शॉर्ट उसमें आप एक मैसेज दे सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा टाइम होता है तो कभी कभार लिख लेती हूँ, अभी कोई मैं प्रॉपर उससे नहीं लिखती। और एक मैं जस्ट आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसका एक मैसेज मैं रिपीट करना चाहूंगी कि प्लीज मैं अपने सब जिस भी कंट्री में हमारी कम्युनिटी रहती है पाकिस्तानी डायस्पोरा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज पॉलिटिक्स को पॉजिटिव वे में डिस्कस करें अपने बच्चों के सामने और उनको लेके आए, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी खाली चेयर जो है वो आपको हुकूक नहीं दिलाती। अगर आपके बच्चे उन सीट्स पर नहीं बैठे तो फ्यूचर में लेजिस्लेशन में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा। और जारी बात है हर कम्युनिटी अपने हिसाब से, अपने फेथ और वैल्यू के हिसाब से अपना नुक्ता नजर रखती है और फिर वो लेजिस्लेशन बनती है। तो प्लीज इस बात को याद रखें कि एम्प्टी चेयर नेवर स्पीक्स फॉर यू, यू हैव टू बी ऑन दैट सीट। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि इसको बकायदा मेरा एक प्रोजेक्ट है, मैं बात करती हूँ कम्युनिटी में बहुत ज्यादा इस पे, लेट्स टॉक पॉलिटिक्स। तो उसमें जब ये लोग डिस्कस करें उसमें उसके प्लस और नेगेटिव सब सामने आते हैं, लेकिन हमारी इस वक्त की जरूरत है और ये इस्लामिक चीजों के साथ भी कंपेटिबल है। आप देखें इस्लाम जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, बैत जो है बेसिकली वन वोट लिया जाता था, वोटिंग के जरिए आपकी खिलाफत।
1: सही, तो शगुफ्ता जी हमारे साथ हैं और शगुफ्ता जी ने बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया कि आप जहां पर भी इस दुनिया में मौजूद हैं आपका जो मैसेज है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हर चीज़ को आप पॉजिटिव लें ताकि हमारी जो न्यू जनरेशन है वो भी जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो आ सके। तो ये थी हमारे साथ शगुफ्ता जी, शगुफ्ता जी का थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गई है, इंशाल्लाह वो हमारे साथ दोबारा ज्वाइन किया जी। शगुफ्ता जी बोलिएगा।
2: जी सॉरी, तो बस मैं ये चाहूंगी कि ये हमारे वक्त की जरूरत है, इस मैसेज को जितना भी आप आगे कर सकते हैं जरूर करें और मेरी भी कोशिश है कि अपने लोगों के अंदर ये शोर पैदा किया जाए कि वो सिस्टम में हिस्सा लें और उसके बारे में बाकायदा जो है वो एजुकेशन लें।
1: राइट,
2: पोएट्री की आपने बात की थी, मैं बहुत थोड़ा अभी लिख रही हूँ लेकिन अभी विमेंस डे गुजरा
1: जी।
2: तो उस पे मैंने एक बहुत छोटी सी लिखी थी, स्टिल अंडर प्रोसेस है लेकिन एक छोटी सी मैंने नज़म लिखी थी कि क्या हुआ अगर एक औरत हूं मैं, क्या हुआ अगर एक औरत हूं मैं, ना जाने कितनों का हौसला हूं मैं।
1: क्या बात,
2: मेरी माँ मुझे चांद कहती थी, मेरा बाबा फख्र से देखता था मुझे, अपने बच्चों की मैं हूं जन्नत, क्या हुआ अगर एक औरत हूं मैं, ना जाने कितनों का हौसला हूं मैं। आपकी एक आवाज पे चली आती हूँ, आपकी एक आवाज पे चली आती हूँ मैं, आप सबकी भी बहन हूं मैं, क्या हुआ अगर एक औरत हूं मैं, ना जाने कितनों का हौसला हूं मैं। मेरे वजूद से है इस दुनिया को दुआम मिला, मेरे वजूद से इस दुनिया को दुआम मिला, जन्नत को जिताया गया मेरे लिए, मेरे बगैर ना घर का तसव्वुर ना माशरे का वजूद, मेरे बगैर ना घर का तसव्वुर ना माशरे का वजूद, अपने भाइयों के शाना बशाना खड़ी हूँ मैं, क्या हुआ अगर एक औरत हूँ मैं, ना जाने कितनों का हौसला हूँ मैं।
1: क्या बात है शगुफ्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत खूबसूरत मैसेज, क्या हुआ अगर एक औरत हूँ मैं, यही आपकी जो है
2: उनका
1: हौसला हूँ मैं। ये बहुत मतलब खूबसूरत और बड़ा इनकरेजिंग है, ऐसी ही इनकरेजिंग पर्सनालिटी रहिएगा शगुफ्ता जी, हमारी बहुत सारी दुआएं वेल विशेज आपके साथ हैं, आप इसी तरह तरक्की करती रहें, दूसरों के लिए जो है आप रहनुमाई का जरिया बनते रहें। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। जी ये थी शगुफ्ता नसरीन लंदन से हमारे साथ और उन्होंने हमें ज्वाइन किया, बहुत खूबसूरत और ज़बरदस्त उनकी गुफ्तगू रही इस खूबसूरत मैसेज के साथ कि ज़िंदगी में पॉजिटिव रहिए, ज़िंदगी में पॉजिटिविटी जितनी इम्पॉर्टेंट है आपकी सेहत के लिए, माशरे की सेहत के लिए, तो उसका ख्याल रखिए, दूसरों में जो है वो आप अच्छी बात, अच्छा इखलाक और अच्छी रहनुमाई जो है वो ज़रूर फराहम कीजिए। जी हमारा वक्त हुआ जाता है हमारे एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे हम अपने गेस्ट नंबर 3 के साथ, वो भी बहुत इंटरेस्ट पर्सनालिटी है, हमारे साथ रहिएगा, स्टे ट्यून्ड विद सलाम मीडिया।
9: ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, मूविंग बाउंड्रीज, जॉइनिंग हैंड्स, सलाम मीडिया। ह्यूमैनिटी सेट्स द एजेंडा।

0: Breaking stereotypes, moving boundaries, joining hands. Salam Media. Humanity sets the agenda.
1: Shimmer, sparkle, captivate.
2: जी वेलकम बैक करते हैं आपको जोहान्सबर्ग से मिड मॉर्निंग टॉक विद मरियम हाशमी प्रोग्राम में. और प्रोग्राम में माशाल्लाह बड़े एक्सक्लूसिव गेस्ट जो हैं वो आज आ रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. और अब आपको अपने एक बेहतरीन किस्म के गेस्ट से मिलवाते हैं. बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं और उनकी अचीवमेंट की मैं क्या बात करूँ. माशाल्लाह उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव की हैं लाइफ में. और सबसे बढ़कर जैसे मैं बात करती हूँ कि जो कम्युनिटी वर्क है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम्युनिटी के लिए काम करना आसान नहीं है. तो उन्होंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें की हैं जिससे जो है कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले, खुशी मिले. और उसमें उनकी बहुत सारी जो है काविश हैं. सबसे पहले तो जो इनका मेन काम है वो ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट पर वो बहुत ज़्यादा बात करती हैं और उनकी एडवोकेट हैं. और बहुत ज़्यादा उन्होंने इवेंट्स भी इस तरह के ऑर्गेनाइज़ किए हैं जिसमें वो प्रमोट कर सकें, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर सकें, ख़वातीन को उनका सही हक और सही बात जो है उनकी बता सकें कि उनका क्या किरदार, क्या वेल्फ जो है बेहतरीन किरदार जो है उनका किसी भी सोसाइटी में होना चाहिए. क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि ख्वातीन जो है वो किसी भी शोबे में पीछे नहीं है. वो जिस शोबे में भी जाती हैं अपना नाम भी बनवाती हैं, अपना लोहा मनवाती हैं और जनाब बहुत ज़्यादा जो है वो कामयाबियाँ जो है वो हासिल करती हैं. तो माशाल्लाह वो लंदन में बहुत ज़्यादा समारा इवेंट के नाम से इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन उसकी को चेयर हैं. और बहुत सारा इवेंट्स जो है वो ये कम्युनिटी के जो है ये बहुत करवाती हैं. अवार्ड्स जो हैं सबसे मेन जो है बात ये है कि लोगों की जो अचीवमेंट हैं ये उनको सेलिब्रेट करती हैं. जी हाँ, अवार्ड सेरेमनीज जो हैं ये ऑर्गेनाइज करती हैं. लोगों की जितनी भी आपकी कोशिश, आपकी स्किल्स हैं ये उनको जो है सराहते हैं. उनकी जो है अप्रिसिएशन, एक छोटी सी अप्रिसिएशन है कि आप उनको अवार्ड से नवाजें. और माशाल्लाह ये लंदन में अपनी कम्युनिटी के लिए बेहतरीन काम कर रही हैं. तो मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊँगी. हमारे साथ मौजूद है मिस मारिया. अस्सलाम वालेकुम मारिया.
3: क्या हाल है
2: जी मारिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मारिया कैसी हैं आप? कैसा है लंदन का वेदर? जोहान्सबर्ग का तो वेदर आज बहुत अच्छा है क्योंकि ये विंटर सीजन है, लेकिन लंदन में सुना है काफी गर्मी है, लेकिन अब काफी वेदर ठीक हो रहा है. आप क्या बताएंगी लंदन के वेदर के बारे में?
3: जी बिल्कुल, लंदन में तो इतना अच्छा मौसम है. We've had the longest summer in a long time. तो बहुत मजा आ रहा है. अब जब दिन छोटे होंगे तो फिर पता चलेगा.
2: सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है. क्योंकि लंदन के बारे में यही कहा जाता है जरा थोड़ा सा डिप्रेसिव हो जाता है विंटर, क्योंकि लोग जरा ज्यादा बाहर नहीं निकल पाते. लेकिन फिर भी वहाँ के जो लोग हैं उनका इखलाक बहुत अच्छा है, उनका दिल बहुत बड़ा है और वो बहुत ज्यादा जो है लोगों को मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं और लोगों से जो है ना अपना जो है गेट टुगेदर करते हैं. आपके बारे में मैं यही बता रही थी मारिया कि माशाल्लाह बहुत ज्यादा गैदरिंग्स जो है वो ऑर्गेनाइज करती हैं और आपका मकसद सिर्फ यही है कि लोगों को खुशी दी जाए. अपनी कम्युनिटीज पर तो आपका ध्यान है ही, लेकिन ये है कि वहाँ पर इतने लोग हैं वो एटलीस्ट इंजॉय कर सके, उनके मुंह पर उनकी छोटी सी स्माइल आ जाए, क्योंकि मुस्कुराहट भी खेरना भी एक सदका ही जा रही है. और माशाल्लाह बहुत ज्यादा जो है वो काम कर रही है. अच्छा मारिया, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि वुमेन एम्पावरमेंट पे आप माशाल्लाह बहुत काम करती हैं, आपने इसी फील्ड को क्यों चुना और आप क्या समझती हैं कि ये जो है वुमेन एम्पावरमेंट हर वुमेन को पता होनी कितनी जरूरी है?
3: देखिए जो वुमेन एम्पावरमेंट है, देखिए वी फॉलो हमारे जो जनरेशन है, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारी जो दादी नानी अम्मी खाला, रोल मॉडल्स इन आवर लाइव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैंने सोचा कि देखिए हमारी जो जनरेशन अबव है उन्होंने हमारे लिए एक इतना अच्छा रोल मॉडल साबित किया, तो हमारा भी काम है आगे टू बी अ गुड रोल मॉडल एंड एम्पावर वुमेन. तो मैंने 2018 में शुरू किए थे वुमेन एम्पावरमेंट एंड लेडीज नाइट्स, 3-4 इवेंट्स ऑन एनुअल बेसिस. एंड उसका बस ये मकसद था कि हमारी जो खावतीन है दे फील अप्रिशिएटेड, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनको हम आगे लेके जाएं. देखिए हर जो खावतीन है उनके दुनिया जिंदगी में ना कोई मसले होते हैं, तो मुझे ये था कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जहाँ लोग अपने जो प्रॉब्लम्स है वो भी शेयर करें, कोई हल उनको चाहिए हो वो भी हम उनको हेल्प करें, उसके अलावा एक एंजॉयमेंट का जो माहौल होता है वो होना चाहिए. इट्स ऑल अबाउट एम्पावरिंग ईच अदर. एंड माशाल्लाह यहाँ यूके के अंदर हमारी जो खवातीन हैं उन्होंने इतना कुछ अचीव किया. यू नो वी आर वेरी लकी कि हम यहाँ यूके में रहते हैं. इट्स अ वेरी डिप्लोमेटिक सोसाइटी. Women have so much strength and power to achieve what they want.
2: Right.
3: हम यहाँ आदमियों से बिल्कुल पीछे नहीं है. So we have the same ability कि हम भी achieve कर सके जो हमें हमारे
2: आपके ख्याल में जो ब्रिटिश एशियन कम्युनिटी है उसमें खवातीन अपना किरदार किस तरह मजबूत बना सकती हैं, इस पे आप कुछ रोशनी डालेंगी?
3: देखिए पहले तो ये है कि कम्युनिटी में आप इन्वॉल्व हो.
2: राइट.
3: सेकेंडली आपको पता है कि पॉलिटिक्स इज अ वेरी बिग थिंग इन द यूके एंड आई एम इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स. मैं काफी एक्टिव हूँ पॉलिटिक्स के अंदर एंड यहाँ पॉलिटिक्स में बहुत हमारी खवातीन के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं. तो इतनी हमारी फीमेल्स को यहाँ पता नहीं है कि हम कैसे पॉलिटिक्स में एंटर कर सकते हैं, कैसे हम एक चेंज लेके आ सकते हैं कम्युनिटी के अंदर थ्रू पॉलिटिक्स. तो ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारी खवातीन को पॉलिटिक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके आना चाहिए.
2: राइट. सही. अच्छा, जो पब्लिक अपीयरेंस है, ये जो लीडरशिप है, ये कितनी ज़रूरी है? माशाल्लाह आप लीडरशिप, जैसे आपने बात किया पॉलिटिक्स में है, और मैं अपनी ऑडियंस को भी ये बताती चलूँ कि माशाल्लाह काउंसलर के इलेक्शन के लिए जो है आपका इंतखाब हुआ था, यू वर सेलेक्टेड फॉर दैट. और बड़ा मेरा तो ख्याल है कि काउंसलर की जिम्मेदारियाँ भी बहुत होती हैं, प्रेशर भी. प्रेशर को कैसे हैंडल किया हमारी आपने उस टाइम पर?
3: सपोर्ट मेरे पास बहुत ज्यादा थी. एक तो मेरे हस्बैंड की सपोर्ट, फिर मेरे जो फ्रेंड्स थे जो इतनी दूर दूर से आते थे मेरी कैनवसिंग के लिए, ऑल ओवर द कंट्री से लोग आते थे हेल्प करने के. इलेक्शन डे के ऊपर लोगों ने मुझे हेल्प की. जो यहाँ की जो पॉलिटिक्स है ना, इट इज सो वेलकमिंग फॉर फीमेल्स. सो हमारा बस ये है कि जितना भी आप कम्युनिटी के साथ काम करेंगे, आप अपने लोकल काउंसलर्स के साथ करेंगे, अपने लोकल काउंसिल के साथ काम करेंगे, उतना आपको वो नॉलेज भी होगा, उतना आप आगे भी जाएंगे एंड आप इंजॉय भी करेंगे.
2: राइट. बिल्कुल सही. अच्छा मारिया, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. माशाल्लाह जैसे इवेंट्स आप ऑर्गेनाइज करती हैं और गैदरिंग्स में स्पेशली वुमेन बेस्ड आपके इवेंट्स अगर जो उनकी हम बात करें, तो उसमें जो है आपका मकसद जो है जैसे कि नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग होती है या एक दूसरे की सपोर्ट होती है, तो ये सपोर्ट सिस्टम आप क्या समझती हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है या इंडिपेंडेंटली भी आप अपना कुछ कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीज में?
3: वो कहते हैं ना कि एक बंदा या बंदी दे कैन ओनली अचीव थिंग्स लिमिटेड अमाउंट. अगर आप कंबाइन करें, लोगों के साथ आप काम करें, यू कैन अचीव अ लॉट मोर बिकॉज यू कैन डेलीगेट जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. एंड कम्युनिटी कोहेजन इज वेरी इम्पोर्टेंट कि आप साथ में काम करेंगे तो आप और भी जल्दी आगे जाएंगे और ज्यादा आप अचीव करेंगे.
2: राइट. सो उसमें जो है आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है कि आप कम्युनिटीज से टॉक करती हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज की अगर डिफरेंट सोच है, डिफरेंट उनके ख्यालात डेफिनेटली होते होंगे, उनको आप उसको कैसे ओवरकम करती हैं हमारी?
3: देखिए आपको ना एक असेसमेंट करनी पड़ती है कि ये कम्युनिटी से मैं बात कर रही हूँ, इनके क्या मसले हैं, इनके क्या इंटरेस्ट हैं, इनके क्या सोल्यूशन हमने ढूंढने हैं. अगर आप ये चीजों को समझ लेना तो फिर काफी इजीली आप लोगों के साथ काम कर सकते हैं. डजंट मैटर कौन सी कम्युनिटी में वो यू नो पीछे से वो हो.
2: राइट. अच्छा मारिया, जैसे आपने काउंसलर के इलेक्शंस की मैं बात करूँ, माशाल्लाह बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंपेन आपकी रही है. अच्छा, आपने लोगों से बात की है, लोगों से आपका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है पब्लिक लेवल पे, तो उसमें आप क्या, आपको क्या लगा कि लोगों की एक्सपेक्टेशन इस एक काउंसलर से क्या होती है, क्या उनके मेन कंसर्न्स हैं? जैसे कि अपने पाकिस्तान के भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं, हमें पता है डिफरेंट, लेकिन लंदन के लोगों के कंसर्न्स क्या हैं? आपको क्या लगा कि किस पे ज़्यादा वर्क होना सिस्टम के लिए बेटर है?
3: देखिए जो काउंसिल के इलेक्शन होते हैं ना एज ए कैंडिडेट,
2: जी
3: वो होता है जो आपका वोट है उसके लिए आप इलेक्शन लड़ रहे हैं. तो मेरा जो वोट था वो चिज़े कनस भी था. तो इट्स अ वेरी लवली नाइस एफ्लुएंट एरिया, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे कैफेज हैं, कम्युनिटी है. ज़्यादा उनका ये होता है कि you know, keeping the parks green, जो streets हैं उनको साफ रखना, to make sure that there's law and order in the area, to inspire our youth, more youth centers, more opportunities for the youth, getting youth off the streets and getting them to do things more practically. ज्यादा यही होता है कि जो locality होती है ना उन वहाँ चीजें सही चलनी चाहिए.
2: सही. अच्छा अच्छा, लोगों के पीछे हर कामयाब शख्स के पीछे किसी का हाथ होता है. आप अपनी कामयाबी का सेहरा किसके सर देना चाहेंगी, किसको देना चाहेंगी कि आपके पीछे सपोर्ट सिस्टम कौन था?
3: देखिए, सपोर्ट सिस्टम होता है कि जो आपकी फैमिली होती है. माय हस्बैंड इज वेरी वेरी सपोर्टिव. उन्होंने ऑलवेज मुझे पुश किया कि ये चीज तुम कर सकती हो एंड तुम्हें करना चाहिए. उसके अलावा my father, who's no longer here, he was a very ambitious man. And, you know, even his, you know, input in my life was very, very important. And then, jo ghar ki jo khawateen hoti hai, jo dadi, nani, ammi, my mother-in-law, to ye sab ke jab journeys mein dekhti hu na, to wo mujhe inspire karti hai ki maine hatke thoda sa aur unke unse thoda sa aage jana hai जिंदगी के अंदर.
2: ये कितनी जबरदस्त बात है. इट्स टाइम फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक. मारिया से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी एंड विल कम बैक जस्ट आफ्टर फ्यू मिनट्स. सो स्टे ट्यून्ड ऑन सलाम मीडिया फ्रॉम जोहान्सबर्ग.
1: शिमर, स्पार्कल, कैप्टिवेट. नथिंग लेस देन अ मास्टरपीस. ड्रॉपलेट्स ऑफ गोल्ड इंस्पायर्स प्रेशियस डिजाइन. Platinum bursts with intricate freshness, and every pure diamond becomes more than just a girl's best friend. Voda Gold Gem Jewelers, where timeless dreams become a reality. Come to us. We tailor-make designer gold, platinum, and diamond jewelry. Trade in or remodel your old gold. Clad yourself with classy name-branded watches. We offer insurance valuation and Freeza card calculation. Visit us at 534 Ridge Road, Overport, or call 031-208-9142. Voda Gold Gem Jewelers, manufacturers of fine gold and diamond jewelry.
4: Hmm, Dad, these Frimax chips are so tasty.
5: Wow, that really takes me back. My dad bought me a Frimax chips every day after school. They were my favorite when I was your age as well. Quality is at the very heart of what we do, and that's why we ensure that every Frimax packet is filled with the beautiful goodness and flavor-packed taste that you've come to expect from us since 1982. Frimax, from generation to generation.
6: You South African, of course. You anxious about the future. We've got you covered. Build on your wealth portfolio with Randri Jewelers Gold Coin Exchange. Visit us at 151 Stephen Dlamini Road, Musgrave, Durban. Or call us on 031-202-4700 for more information. Randri Jewelers Gold Coin Exchange. Your passport to gold investment.
7: Africa. Give the gift of clean water with Africa Muslims Agency. With every water well or borehole you donate, your drop becomes a river.

0: simple, transparent, and convenient. Visit oldbuttercup.co.za to learn more. Old Buttercup, your partner bank. Old Buttercup Bank Limited is an authorized financial services and credit provider.
1: Listen to something fresh. Listen to Salam Media, your humanitarian broadcaster.
2: Gee, welcome back program. Mid morning talk with Maryam Hashmi from Johannesburg, South Africa. Gee, yeah, Salam Media se hum live hain. Aur hamare is program ka maksad, jaise aapko pata hai ki yehi hai ki hum apni Urdu language ko promote kar saken. Apni wo khawateen jo dunia mein bahut behtareen kaam kar rahi hain aur kuch na kuch dunia ke liye, community ke liye, apne mulk ke liye kar rahi hain, unko hum is platform ke zariye connect kar saken. Hamare saath maujood hain Maria aur Maria se bahut achhi guftugu chal rahi hai. Jaise maine unke introduction mein bataya ki mashallah bahut cheeze jo hain wo kar rahi hain कम्युनिटी के लिए. उनमें सबसे एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं अपने लिहाज से भी कहूंगी कि मुझे जो चीज बहुत पसंद आई है वो ये कि वो दूसरों की सलाहियतों को सराहती हैं. जी हां, वो जो अवार्ड सेरेमनी है वो ऑर्गेनाइज करती हैं और लोगों को अप्रिशिएट करती हैं उनकी काविशों के बारे में. तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी, जी मारिया, मैं आपसे मेन क्वेश्चन ये करना चाहूंगी, ये बहुत बड़ी चीज है अवार्ड देना किसी को, किसी की सलाहियतों को समझना और उसको अप्रिशिएट करना. ये ख्याल आपको कहां से आया, कैसे आया, और फिर इसमें आपको कोई चैलेंजेस भी आए वो भी हमसे डिस्कस कीजिएगा, और इंप्रेसिव मूवमेंट जो है या प्राउड मूवमेंट जब आपने किसी को उसकी एबिलिटीज के मुताबिक आपने उसको प्रोवाइड किया. एक अवार्ड है वो किसी के लिए तो बहुत बड़ी चीज है. वो आपने किसी को दिया और उसके चेहरे पर मुस्कान आई, उसकी क्या फीलिंग थी आपकी, आप जरा प्लीज पे रोशन डालिए.
3: मरियम, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी काम करने के लिए ना बहुत मेहनत लगती है. जैसे मैं आपको मुबारकबाद देना चाह रही हूँ कि देखो आपने इतना कुछ अचीव किया है और आप इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे बैठती हैं जहाँ हम आप हमें आगे लेके आती हैं. सो पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस तरह के काम कर रही हैं. एंड आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि यूर अ रोल मॉडल एज वेल एंड आप इस तरह का अपना काम जारी रखें.
2: एंड
3: आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो दैट वी ऑल अप्रिशिएट द वर्क दैट यू डू एज वेल एंड दैट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. जो अवार्ड्स है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है, बिकॉज उसका ये मकसद होता है कि एक अप्रिशिएशन किसी की मेहनत, उनकी जर्नी, उनकी जो लाइफ टाइम की मेहनत है उसको रिकॉग्नाइज करना.
2: बिल्कुल.
3: अब 16 साल पहले मेरे हस्बैंड ने शुरू किया था पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड्स. अल्हम्दुलिल्लाह से 16 इयर्स हो गए हम पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड्स को रन करते हैं. एंड वी रिकॉग्नाइज पाकिस्तानीज ग्लोबली हु एक्सेल्ड इन देयर फील्ड. एंड हम करते हैं हर साल 14 अगस्त को, 14th August, because it's Jashn-e Azadi for Pakistan. And hamara sabse bada jo achievement tha na Pakistan Achievement Awards ka, ke mere husband ki ek dream thi ki unhone Pakistan ka flag dekhna tha Wembley Arena ki stage ke upar.
2: Kya baat.
3: That was his dream.
2: Zabardast.
3: And alhamdulillah, Pakistan ki 75th birthday pe humne ye khwab pura kiya, jahan 12,000 Pakistanis came to celebrate Pakistan's 75th birthday.
2: Mashallah.
3: At Wembley Arena. So in our 16 years, that's been our biggest achievement.
2: It looks like
3: to actually celebrate in Pakistan's 75th birthday, which is an iconic birthday, at the iconic Wembley Arena with Pakistan's flag on the stage. That was our biggest achievement.
2: That's amazing, man. That's really amazing. बहुत जबरदस्त. और देखिए, आपसे जब हम जुड़ते हैं, इस तरह के लोग जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, तो ये रिकॉग्निशन मेरा ख्याल है आपको भी मिलनी चाहिए. और ये बड़ी छोटी सी एफर्ट है कि मैं आपको, आपके साथ ये प्रोग्राम कर रही हूँ और आपके जरिए पूरी दुनिया को मैसेज जा रहा है कि आप एटलीस्ट लंदन में अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए कितनी जो है वो मेहनत आप कर रही हैं.
3: देखिए, पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है ना आगे लेके आना, वो बहुत जरूरी है
2: और ये जिम्मेदारी है हमारी.
3: जी बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज हम पाकिस्तानी कोई भी फील्ड में पीछे नहीं है. एंड यही मकसद है कि हम हर साल एक ब्रिटिश पाकिस्तानी पावर 100 लिस्ट निकालते हैं एंड उसके अंदर हम जो टॉप 100 पाकिस्तानीज हैं उनको हाईलाइट करते हैं. उसकी बहुत मेहनत लगती है उस पब्लिकेशन को पब्लिश करने के लिए, बट वो एक हमारी अचीवमेंट है कि

0: है, हर साल ब्रिटिश पाकिस्तानी पावन 100 लिस्ट हम निकालते हैं। उसके अलावा हम करते हैं ब्रिटिश एशियंस हूज हू अवार्ड्स। दिस टेक्स प्लेस एट द आइकॉनिक सवोई होटल, एक ही सवोई है पूरी दुनिया के अंदर, तो
1: राइट
0: वहाँ हर साल वहाँ होता है, तो 5 साल हो गए हैं फॉर ब्रिटिश एशियंस हूज हू अवार्ड्स। उसके अलावा हम करते हैं ब्रिटिश एशियन मीडिया अवार्ड्स। सो वी रेकग्नाइज पीपल विद इन द मीडिया इंडस्ट्री, उनको रेकग्नाइज करते हैं, उनकी अचीवमेंट्स को रेकग्नाइज करते हैं, उनकी जर्नी को रेकग्नाइज करते हैं। उसके अलावा आपको पता है यहाँ यूके के अंदर जो खाने पीने का माहौल है
1: जी
0: जबरदस्त है,
1: जी जी
0: तो
1: जबरदस्त
0: जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, हम एक अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज करते हैं, इट्स कॉल्ड एशियन फूड एंड रेस्टोरेंट अवार्ड्स। एंड अल्हम्दुलिल्लाह से 11 साल हो गया है इस अवार्ड सेरेमनी को। दिस इज आर 11th ईयर एंड द नेक्स्ट वन इज हैपनिंग ऑन द 7th of December। सो वी रेकग्नाइज जो रेस्टोरेंटर्स हैं, होलसेलर्स, कैश एंड कैरीज, केटरर्स, वेन्यूज, फूड ब्रांड्स। आपको पता है हमारी एशियन फूड ब्रांड्स इतने हैं यूके के अंदर राइट नाउ। सो ये बहुत हमारा एक सक्सेसफुल अवार्ड सेरेमनी होती है ऑन एनुअल बेसिस। एंड पूरी फूड इंडस्ट्री को, ड्रिंक्स इंडस्ट्री को, पूरी इंडस्ट्री को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। एंड ये भी सेंट्रल लंदन में ही होता है, तो इंशाल्लाह दिस ईयर विल बी हैपनिंग। उसके
1: इंशाल्लाह
0: अलावा हम काफी और कम्युनिटी का काम करते हैं, चांद रात करते हैं, चांद रात ईद एक्सिबिशंस, काफी इन्फ्लुएंसर्स हमारे साथ काम करते हैं, काफी इन्फ्लुएंसर्स को हम वहाँ रिकॉग्नाइज करते हैं चांद रात के ऊपर एज वेल। एंड चांद रात इज अ वेरी कम्युनिटी इवेंट, ईद
1: जी
0: आने वाली होती है, लोगों ने रोजे रखे होते हैं, तो
1: एग्जैक्टली
0: बहुत
1: जी एक्साइटमेंट होती है
0: इंजॉयमेंट
1: जी,
0: एक्साइटमेंट
1: एक्साइटमेंट
0: होती
1: होती
0: है
1: है, बिल्कुल सही.
0: जी।
1: नहीं भैया, और जैसे कि आपने कितनी खूबसूरत बात किया कि ये बड़ा एक मैसेज है कि आपने हर एरिया को कवर किया है, कि उसमें आपने किसी को लेफ्ट आउट फील नहीं कराया कि भाई सिर्फ अवार्ड सेरेमनी जस्ट फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन के लिए या स्पेसिफिक जो है मीडिया के लिए हो गई या किसी और चीज़ के लिए। आपने तकरीबन रेस्टोरेंट्स, फूड्स, हर डिपार्टमेंट को आपने कवर किया है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जाहिर है ये सोच लेकर आना और फिर सोच को एग्जीक्यूट करना, उस पर अमल करना, उसको अमली जामे पहनाना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मेरा ख्याल है कि हमारी आज की ऑडियंस को भी ये बहुत सुन के अच्छा लगा होगा कि कोई किसी कंट्री में बैठ कर, दुनिया के किसी कोने में बैठ कर जो है मुल्क के लिए कितना कुछ कर रहा है। हमारी बहुत अच्छी डिस्कशन रही आपके साथ, और आपके साथ का बहुत शुक्रिया। और बस ये कहना चाहूँगी कि कोई मैसेज आप देना चाहें जो ख्वातीन लीडरशिप में आना चाहें या वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, आपको मैसेज हमारी यूथ को देना चाहें तो प्लीज़ दीजिए।
0: देखे, कोई भी काम के लिए मेहनत लगती है, मेहनत के अलावा डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है और पैशन बहुत जरूरी है। तो मेरा बस यही है कि आप, इवन इफ यू डोंट मेक इट फर्स्ट टाइम राउंड, कीप ट्राइंग। आपको कोशिश जारी रखनी चाहिए, बिकॉज कोशिश के साथ आप अपने जो रिजल्ट्स है वो सक्सेस लेके आएंगे।
1: बिल्कुल
0: एंड जस्ट कीप गोइंग एंड स्टे इन योर लेन। आपको पता है कि कम्युनिटी के अंदर काफी चीजें होती है कि देर विल बी टाइम्स वे यू फील लेट डाउन, देर विल बी टाइम्स यू विल फील दैट अदर पीपल आर ट्राइंग टू पुल यू डाउन, बट नो, स्टे इन योर लेन, कैरी ऑन विद डिटर्मिनेशन एंड ओनली हैव वन गोल कि मैंने ये चीज सक्सीड करनी है और मैंने ये चीज हासिल करनी है, एंड दैट इज योर सक्सेस। एंड जो भी आपके कंपेटिटर्स हैं, जो आपके इर्द गिर्द जो भी कर रहे हैं, डोंट लेट इट बॉदर यू, जस्ट कीप गोइंग।
1: एंड डोंट गिव अप, बहुत अच्छा मैसेज था। और मारिया के बारे में ये कहना चाहूँगी कि इतनी एफर्ट करिए, इनकी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, कि इनके भाई के लिए ये बहुत ज़्यादा दुआ के लिए कहती हैं, तो उनके लिए आप प्लीज़ उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जो इतने लोग हैं जो अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए इतना काम करते हैं, उनको वैसे तो दुआ की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी जब भी आप हाथ उठाएँ तो ज़रूर मारिया और उनकी फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया मारिया आपके इस खूबसूरत साथ का, और बहुत अच्छा लगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
0: अल्लाह हाफिज, जज़ाकअल्लाह।
1: जज़ाकअल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। ये थी मारिया हमारे साथ लंदन से, और बहुत खूबसूरत और ज़बरदस्त इनके साथ डिस्कशन रही है हमारी। सो बहुत शुक्रिया आपके इस खूबसूरत साथ का। हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद है, ज़बरदस्त गेस्ट हैं, और बड़ी खूबसूरत उनके साथ भी ज़बरदस्त गुफ्तगू हम करने जा रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड विद सलाम मीडिया।
2: At this time of trial and worry, the blessings of charity are the ideal means to avoid calamity and despair. The Al Imdad Foundation gives you the opportunity to sponsor a share in a borehole in South Africa for just 1,000 rand and provide what the Holy Prophet, peace be upon him, called the best form of charity. Donate online at alimdad.com or call 0861 786 243 for more information.
3: You know, it's a wonder how kids get anything done these days. With all the distractions, when do they even get time to study? As a mother, all I can really do is make sure they have all they need to perform at their best. That's why I choose to include Sunfoil Triple Refined Pure Sunflower Oil with every meal I make. Naturally cholesterol-free and approved by the Heart and Stroke Foundation as part of a balanced eating plan. So whether I'm cooking, frying or baking, I know every dish will be a wholesome one. Sunfoil, now we're cooking.
4: Right now, over 150 million children around the world are orphaned, facing hunger, hardship, and uncertainty. With Islamic Relief's Orphan Sponsorship Program, you can provide a child with access to education, nutritious food, essential healthcare, and a safe home. Your sponsorship is not just support, it's hope, security, and a brighter future. Be the reason an orphaned child smiles again. Sponsor an orphan today with Islamic Relief.
5: When the perfect blend of stylish decor, exquisite halal cuisine, and warm hospitality come together, it could only mean Al Bayt Lodge, your true home away from home. Al Bayt is the ideal heaven for families, business people, and tourists with its four-star family rooms and other luxurious facilities. Conveniently situated close to Port Elizabeth Airport, the beach and other amenities, your stay will be truly unforgettable as you'll be taking home lasting memories of the warm hospitality, the serenity and tranquility that Al Bayt has to offer. For reservations, call 041-583-6415 or visit www.albaytlodge.co.za.
6: It's a new beginning. It's a new era. Salaam Media. Humanitarian journalism.

0: جی ویلکم بیک پروگرام گڈ مڈ مارننگ ٹاک ود مریم ہاشمی لائیو فرام جوہانسبرگ. سلام میڈیا, جی ہاں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ہماری فورتھ گیسٹ موجود ہیں جن کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہوں. دیٹ گیسٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ بیکاز شی از مائی کلیگ اینڈ ان کا ایکسپیرئنس بہت زیادہ ہے. اور پاکستان کے ڈفرینٹ چینلس پہ انہوں نے کام کیا, براڈ کاسٹ جرنلسٹ ہیں, اور ان کا جرنلزم اسٹائل جو ہے وہ ہمیں بہت پسند ہے اور ہم جو ہے اس اسٹائل کے دیوانے ہیں. تو اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ آج ہماری جو ہے ہمیں پروگرام میں جوائن کریں, کیونکہ جیسے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اس پروگرام کو اردو میں کرنے کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم اس انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ نہ صرف اپنے ملک کو بلکہ اپنی زبان کو بھی پروموٹ کر سکیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہے نیلم اسلم لندن سے, آئیے ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم نیلم.
1: وعلیکم السلام مریم, کیسی ہیں آپ اور آپ کے تمام جو سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں ان سب کو بھی سلام.
0: وعلیکم السلام, بہت شکریہ نیلم آپ نے اپنے اتنے بزی اسکیجول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. امید ہے آج کی ڈسکشن جو ہے وہ سب کو بہت پسند آئے گی. اور لندن کا ویدر کیسا ہے؟ ویسے تو میں سب سے پوچھتی ہوں آپ کیا لیتی ہیں, کیونکہ ساؤتھ افریقہ میں تو ونٹر ہے اور بڑا اچھا اب تو ویدر اسٹارٹ ہو رہا ہے, سمر کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو آپ سنائیے کہ لندن کے ویدر کی کوئی حال احوال بتائیے ذرا ہمیں.
1: یہ تو آپ نے جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اس وقت جو دکھ ہے لندن کے رہنے والوں کا, انگلینڈ کے رہنے والوں کا, اس کے اوپر بات شروع کر دی ہے. تین ہیٹ ویوز اس بار ہم دیکھ چکے ہیں جو کہ بڑی ایکسٹریم ہیٹ ویو تھیں اور لندن میں اس نے ریکارڈز توڑ دیے ہیں. مئی جون جولائی اگست وہ سب میں ہیٹ ویو رہی ہے, اور ابھی بھی تھنڈر اسٹارمز کی جو وارننگ ہے وہ دی گئی ہے, لیکن اس سے بھی بجائے کہ فائدہ اور نقصان ہی ہونا, کیونکہ بہت زیادہ ڈرائی ویدر رہا, بہت زیادہ ہاٹ ویدر رہا ہے, اور آنے والے سالوں میں انگلینڈ کے لوگوں کو بڑا اس کے لیے لائف سیریس قسم کی لائف اسٹائل چینجز کرنی پڑیں گی. اگر موسم کا احوال آپ جاننا چاہتی ہیں تو وہ اس وقت اچھا نہیں. ابھی آج کل تھوڑی سی گرمی کم ہے, لیکن ہمیں بتایا جا رہا ہے میٹ آفس کی جانب سے کہ ایک اور ہیٹ ویو ہے جس کا بھی سامنا کرنا ہے ہم نے.
0: چلے آپ کو اسٹرانگ بنا رہے ہیں ویدر کی کنڈیشنز جو ہے, کیونکہ انگلینڈ کے بارے میں لندن کے بارے میں یہی مشہور تھا, یہی فیمس ہے کہ بہت ٹھنڈ ہوتی ہے وہاں, اور جب یہ اسٹارٹ ہوتی ہے تو جاتی بڑی مشکل سے. چلے اسی ونٹر کو اور ہم ونٹر کو انجوائے کریں, آپ اس سمر کو انجوائے کریں, اور بڑا اچھا جو ہے یہ کمبینیشن جو ہے وہ ہے. اچھا نیلم بات کرتے ہیں آج کے ٹاپک کی, بڑا امپورٹنٹ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. بات میں نے اسپیشلی آپ کو اس لیے لیا کہ ہم لندن میں بہت سارے ایسے انسیڈنٹ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں کہ اسلاموفوبیا اٹیک بہت زیادہ ہو گیا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں سب سے پہلے کہ اسلاموفوبیا کیوں بڑھ رہا ہے, اور پھر اس کے رسک جو ہیں وہ کیا ہیں, اور کیسے جو ہے اس پہ اٹیکس کو جو ہے روکا جا سکتا ہے, اس پہ بھی ہم بعد میں بات کریں, لیکن یہ کیوں ہو رہے ہیں, یہ کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟
1: صحیح. اچھا مریم, اسلاموفوبیا جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بڑھ رہا ہے تو آئی تھنک ہم اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں. یہ ہمیشہ سے تھا, یہ ہمیشہ سے ہے, چونکہ اب سوشل میڈیا آ گیا ہے, چونکہ اب ویب سائٹس ہیں, نیوز میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے تو وہ رپورٹ ہو جاتے ہیں انسیڈنٹ. کیا آپ بتائیں جو 70s اور 80s میں یہاں پہ امیگرینٹ فیملیز تھیں, آپ صرف اگر پاکستانیوں کے کانٹیکس میں بھی بات کر لیں, وہ آپ کو ہوریفک اسٹوریز نہیں بتاتی کہ جب وہ اس ملک میں پہلی بار آئے تھے کیا کیا ان کو سہنا پڑا تھا. حلال گوشت یہاں پر اویلیبل نہیں ہوتا تھا, مساجد نہیں تھیں, کس طرح سے جو بچے اسکول جاتے تھے ان کو کس طرح سے جو دوسرے بچوں کی جانب سے بلنگ کا سامنا کرنا پڑتا تھا ان کے ریلیجن کی وجہ سے. تو یہ سارے انسیڈنٹس ایونٹس ہمیشہ سے رہے ہیں. اب لوگوں میں اویئرنیس یہ آئی ہے کہ وہ رپورٹ کرتے ہیں. میں آپ کو ٹیل ماما کی ہی اگر جو سٹیٹس ہیں وہ شیئر کر دیتی ہوں, کیونکہ آپ کو پتا کہ جو ٹیل ماما ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی ہم یہ بتائیں گے سننے والوں کو کہ وہ سارے جو اسلاموفوبک ایونٹس ہوتے ہیں ان کو ریکارڈ کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں, ٹھیک ہے, پولیس کو بتاتے ہیں, لیکن یہ بھی جو ادارہ ہے یہ تمام اسلاموفوبک انسیڈنٹس کو رپورٹ کرتا ہے. اس کی جو سٹیٹس ہے فرسٹ 6 months آف 2026 یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ 131 انسیڈنٹس ہوئے ہیں اینٹی مسلم ہیٹ کے, ہیٹ اسپیچ کے, اسلاموفوبک ایونٹس کہہ سکتے ہیں. خواتین کو ٹارگیٹ کیا گیا, بچوں کو ٹارگیٹ کیا گیا, راہ چلتے, بسز میں, ٹرینز میں, آپ کی ورک پلیسز پہ ہوٹنگ کی جا رہی ہے, پارکنگ اسپاٹس پہ, شاپنگ سینٹرس میں, اور یہ 2023 میں اوور آل 1000 جو ایونٹس تھے وہ رپورٹ ہوئے تھے, اور یہاں 2026 میں صرف 131 انسیڈنٹس فرسٹ 6 months میں رپورٹ ہوئے. لیکن یہ وہ ہے, یہ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ ابھی اسلاموفوبیا بڑھ رہا ہے, یہ ہمیشہ سے تھا, لیکن اب لوگوں میں کم از کم یہ اویئرنیس آ گئی ہے کہ اگر آپ مجھے میرے ریلیجن کی وجہ سے ڈسکریمنیٹ کرو گے तो मैं उसको रिपोर्ट करूंगा और मैं आपको भी एक्सपोज करूंगा।
0: सही, आपने जैसे बात किया सोशल मीडिया की, आप क्या समझती हैं ये जो सोशल मीडिया है इसने इसको बढ़ाया है या इसको कम करने में इसका थोड़ा किरदार है?
1: अच्छा, सोशल मीडिया ने एक तरफ तो इसका इसको रिपोर्ट किया जा रहा है, तो ऐसे लोग भी हैं जो समझते हैं कि ये गलत है और हमारे बरतानी मुख्तलिफ क्योंकि डाइवर्स कंट्री है, मुख्तलिफ रिलीजन और एथनिसिटीज के लोग यहाँ पर हैं, वो इसको कंडेम भी करते हैं, डिस्करेज भी किया जाता है, पुलिस और हुकूमत भी ऐसे कवानीन लाने की कोशिश करती है कि ऐसे इंसिडेंट्स को रोका जाए। लेकिन वहीं सोशल मीडिया पे जब टॉमी रॉबिन्सन जैसे जो फिगर्स हैं, या रिफॉर्म यूके की जो एक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, और उनकी अगर आप रैलीज देखें, वो यूनाइट द किंगडम मार्च हुआ था आपको यकीनन याद होगा मई में, किस तरह से वहां पर एक लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है जो कि एंटी मुस्लिम हेट को के जज्बात को भड़काती है, तो वो भी सोशल मीडिया पे हर जगह पहुंचते हैं, फिर वहां से एक एक्शन होता है, तो फिर मुस्लिम जो कम्युनिटीज हैं वहां से भी एक रिएक्शन आता है, तो सोशल मीडिया एक पूरे एनवायरनमेंट को हॉस्टाइल बना रहा है। पहले मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ रहने वाले जो नेबर हैं जो कि नॉन मुस्लिम हैं वो मेरे बारे में क्या ख्याल रखते हैं, कम्युनिटीज को एक दूसरे के बारे में नहीं पता होता था। अब चूंकि न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट होता था, कुछ लोग पढ़ते थे, कुछ लोग न्यूज सुनते हैं, नहीं सुनते, अब सोशल मीडिया, फोन तो आपके हाथ में है ना,
0: बिल्कुल
1: मुझे फोन पे तो नजर आ ही जाएगा, मैं ना भी देखना चाहूँ तो एल्गोरिदम या इंस्टाग्राम या स्नैपचैट या कहीं ना कहीं वो न्यूज मेरे सामने आ जाएगी और वो सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है। तो सोशल मीडिया का ये किरदार है बढ़ाने में नहीं, लेकिन हर चीज को दिखाने में और उसको मल्टीप्लाई करने में सोशल मीडिया का किरदार जरूर है।
0: सही है, लेकिन इसको हम पॉजिटिव भी कर सकते हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगी, क्या एडवाइस देंगी कि इसको किस पॉजिटिव वे में यूज करें सोशल मीडिया को?
1: आई थिंक मरियम, सबसे पहले तो मैं जो मुस्लिम कम्युनिटीज हैं यहाँ पे, और मुस्लिम ही नहीं मैं ये कहूंगी कि नॉन मुस्लिम भी हैं, अगर हिंदूज हैं, सिख हैं, इवन वाइट एथनिसिटी के जो लोग हैं, किसी को भी, किसी भी इंसान को उसके रिलीजन या उसकी रेस या एथनिसिटी की बुनियाद पर कभी भी किसी भी किस्म के तासुब का सामना नहीं करना चाहिए। इस हवाले से स्कूल्स में जहाँ वर्कशॉप्स होती हैं, बच्चों को सिखाया जाता है, जहाँ पे कभी कभी हम होता है कि साल में एक दिन मना लिया, जी हमने इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक दिन मना लिया, या किसी और रिलीजन या एथनिसिटी के खिलाफ अगर कोई नफरत या तासुब है उसके खिलाफ, नहीं, इसको साल में एक दिन के लिए महदूद ना करें, कि कॉन्स्टेंटली स्कूलिंग और अवेयरनेस और बार बार बार बार लोगों को बताया जाए कि इट इज नॉट राइट कि आप किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं उसके रिलीजन की वजह से। बार बार इस हवाले से एड्स यूज किए जा सकते हैं, प्रमोट किया जा सकता है ऐसे कैंपेन्स को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को यूज किया जा सकता है, पब्लिक फिगर्स को यूज किया जाता है, अगर वो एक शैम्पू या एक परफ्यूम की बॉटल बेचने के लिए उस पैगाम को घर घर पहुंचा देते हैं, तो ये अच्छा पैगाम ही पहुंचाया जा सकता है अगर गवर्नमेंट्स इसमें इन्वेस्टमेंट करें और इसको देखेंगे किस तरह से ज्यादा लोगों तक इसकी इस पैगाम को पहुंचाया जा सकता है।
0: आपने बहुत खूबसूरत बात की है नीलम, के गवर्नमेंट लेवल पे भी ये चीजें इकदाम होने चाहिए, लेकिन यह है कि अगर आप इंडिविजुअल लेवल की बात करें, जैसे इन्फ्लुएंसर्स की आपने बात की है, कि इन्फ्लुएंसर्स भी ये जिम्मेदारी उठा सकते हैं कि किस तरह से एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो पूरी दुनिया को दिया जा सकता है, कि अगर कहीं ना कहीं हमारे पीछे या यू नो बैक साइड पे हमारी कहीं सोच है अनकॉन्शियसली कि ये है इस्लामोफोबिया, और बहुत सारे लोग जो वहाँ पहले मूव किए थे और अब उनको जिन चैलेंजेस का सामना है वो पिछले से कहीं या तो ज़्यादा है या पीछे से बहुत कम है। जैसे आपने बात किया कि हलाल फूड बहुत कम अवेलेबल होता था, लेकिन माशाल्लाह अब वहाँ हर जगह स्ट्रीट टू स्ट्रीट आप देख रहे हैं कि बहुत सारी डेवलपमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू हमारे इस्लाम के मुताबिक जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा, यंग बच्चे जो हैं, जब हम स्कूल्स में जाते हैं, स्कूल्स में डिफरेंट कल्चर के बच्चे हैं, डिफरेंट रिलीजन के बच्चे, उन्हें तो पता भी नहीं है इन सारी चीज़ों का, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है। आप क्या समझती हैं उसकी क्या मेन वजह है इस डिस्क्रिमिनेशन की? क्या वहाँ का सिस्टम है, एजुकेशन है, या वहां पे आप फैमिलीज को इसमें इन्वॉल्व समझती हैं?
1: आई थिंक कोई भी टीचर्स तो ये बच्चों को एजुकेशन नहीं दे रहे कि आप किसी को उसके कलर की वजह से बुली करें या उसके रिलीजन की वजह से, उसके फेथ की वजह से। ये घरों की ही तरबियत होती है जो स्कूल्स तक आ जाती है, और चाहे स्कूल जितनी भी पॉलिसीज बना लें या सख्ती कर लें, कहीं ना कहीं बच्चों की जो अपब्रिंगिंग घर में हो रही है, जो सोच उनके जहन में डाली जा रही है, वो एक दूसरे अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको किसी ना किसी बात पे वो बुली कर देते हैं, और बच्चे जो इस एज में होते हैं अक्सर यही होता है कि अगर ये बुलिंग नहीं कर रहे होंगे वो किसी के कलर की वजह से कर रहे होंगे, किसी के बोलने के अंदाज की वजह से बुलिंग कर रहे होंगे, जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन होता है ये स्कूलों में। हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि बचपन से ही कुछ बच्चे अगर उनको सही उनकी अपब्रिंगिंग नहीं हो रही तो वो बाकी बच्चों के लिए किस किस तरह से ट्रॉमा का बायस बनते हैं। तो आई थिंक अगर ऐसा कोई बच्चा सामने आता है तो स्कूल्स को ये करना चाहिए कि वो उसको पॉइंट आउट करें, उसके लिए कोई वर्कशॉप्स का जो है वो एहतमाम करें, उसके पेरेंट्स को साथ बिठाएं और उनसे पूछें कि ऐसा रवैया एक डाइवर्स कंट्री में जहाँ पे वो आप देख रहा है कि एक नेबरहुड में आपको मुस्लिम भी नजर आ रहा है, जियो फैमिली भी नजर आ रही है, आपको हिंदू भी सीख थी, उस डाइवर्स कंट्री में वो 7 साल का, वो 11 साल का, वो 15 साल का बच्चा ऐसे क्यों सोच रहा है कि कोई उससे कमतर है, और उस मसले को एड्रेस किया जाए।
0: राइट, ज़बरदस्त। अच्छा नीलम, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर, यूके की मैं बात करूँ, लंदन की मैं बात करूँ, डिफरेंट कंट्रीज़ की, लाइक हम जोहान्सबर्ग की भी बात करते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, उनमें रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। आप क्या समझती हैं कि ये जो रिस्पेक्ट है इसको मेनटेन रखने के लिए या इसको सिखाने के लिए, जिसमें रेसिज़म ना हो, जिसमें डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो इन चीज़ों को मेनटेन रखने के लिए सबसे पहला इकदाम एज अ पर्सन हमें क्या करना चाहिए?
1: एक तो ये कि हमें अपने आप को अकेले नहीं समझना चाहिए मैं इसको, अगर कि मैं जो बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो ही आखिर है, किसी का कोई भी स्टैंड है वो गलत है या सही है, अगर वो स्टैंड वो आप पे इम्पोज नहीं कर रहे, अगर मैं मुस्लिम हूँ और मैं अपने अकायद के साथ जी रही हूँ और मैं अपने नेबर को जो है वो फोर्स नहीं कर रही, उसके ऊपर अपना जो अकायद है वो इम्पोज नहीं कर रही, तो ये मैं अपने रिलीजन की भी रिस्पेक्ट कर रही हूँ और मैं ये उनकी जो रिलीजन है उसकी भी रिस्पेक्ट कर रही हूँ। इस्लाम तो सबसे पहले सिखाता ही यही है कि जो हमारे डिसएग्रीमेंट्स हैं, जो हमारे तर्ज जिंदगी है मुख्तलिफ है, उसकी रिस्पेक्ट की जाए। तो जब मैं हर किसी इंडिविजुअल को अपने आप से शुरू करना है, हो सकता है कुछ लोग आप उनको इज्जत दें तो उनको इज्जत रास भी ना आए लेकिन वो आपका मसला नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: आप कम से कम अपनी जात की हद तक जो है वो लोगों को इज्जत दें अगर आपने इन डाइवर्स कम्युनिटीज में जीना है, वरना तो पाकिस्तान में आप रहते आपके मतलब 90% लोग आपके इर्द गिर्द मुस्लिम थे, बट अगर आप सिर्फ रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हैं और ये जो एथनिसिटी का जो डिफरेंस है यहाँ पे, तो उसमें यही है कि आप अपनी अकायद के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल करें और दूसरों के अकायद का मुकम्मल तौर पर एहतराम करें। तो आई होप कि वो भी एक ना एक दिन, बहुत सारे लोग करते भी हैं इस्लाम का, आप मुख्तलिफ वर्क प्लेसेस में यहाँ पे काम करते हैं, रमजान होता है वो उनको समझ होती है कि वो आपका रोजा है, वो बड़ा केयर करते हैं कि चले आप वर्किंग आवर्स तो यहाँ पे कम नहीं होते मुस्लिम कंट्रीज की तरह, लेकिन कहीं ना कहीं आपका रिगार्ड जरूर किया जाता है। तो यहाँ पे भी कम्युनिटीज में एक गुंजाइश और एक स्पेस पैदा हो रही है और मुस्लिम्स के हवाले से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। और इस्लामोफोबिया क्या है? इस्लाम का डर, इस्लाम से मुतालिक मिसकंसेप्शंस और जो के फैलाए गए हैं मतलब मुख्तलिफ कैंपेन्स के जरिए से, तो वो डर जब आप उनका खत्म कर देंगे कि हम तो आप जैसे ही लोग हैं और हमारा तो रिलीजन हमें इंसानियत का एहतराम और लोगों का कहता है कि मतलब आपकी जबान से भी किसी को नुकसान ना पहुंचे, तो इतना खूबसूरत रिलीजन है, इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम आपको कुछ नहीं कह रहे, तो ये जब आप मिसकंसेप्शन दूर करते हैं तो डेफिनेटली अब इंग्लैंड में काफी स्पेस पैदा हो भी रही है इस्लाम के हवाले से।
0: तो ये जो हमारा स्लोगन है हमारा, जियो और जीने दो, मेरा ख्याल है इस पे जो है हमें अपनी ज़िंदगी को फोकस करना चाहिए, अपनी ज़िंदगियों को लेकर चलना चाहिए कि खुद भी जिएं, खुद भी अच्छा इखलाक जो है आप रखें, अच्छी बात रखें और लोगों के साथ अच्छा ताल्लुक जो है वो इस्तवार रखें। नीलम के साथ हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, टाइम हो जाता है वे बहुत छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड ऑन सलाम मीडिया।
2: Discover the Africa of your dreams and surround yourself with her spectacular beauty. Relax beneath her serene sunsets and explore wildlife at its natural best. It's where the pride of Africa comes together. The Kwantu Private Game Reserve. Get to know the Big Five or cruise on an elephant safari game drive. Interact with lion and tiger cubs and enjoy world-class halal cuisine while we pamper you during your five-star stay. Indulge in the true African experience. For reservations, call now on 042-203-1400 or visit kwantu.co.za. The Kwantu Private Game Reserve, the place of gathering.
3: Gaza needs your support more than ever. Homes have been shattered and families have lost everything. With your support, our teams are delivering clean water tankers, feeding the hungry and assisting orphans who have no one left. Let us give Gaza whatever help we can. African Muslims Agency, empowering, educating, inspiring.
4: World-class financial services only at Safi Global, your financial partner. If you are looking for Islamic, Sharia and ethical financial products, look no further. Sapphire Global offers a wide range of financial service offerings from short-term to life and investments. A full-service center with all financial requirements under one brand. Our highly skilled and experienced consultants are ready to help protect your financial future. Contact us on 041-001-0184 or visit our website on www.sapphireglobalfs.com. Sapphire Global is an authorized financial services provider.
5: Right now, in some of the most devastated parts of our world, places close to many of our hearts, Doctors Without Borders is delivering emergency medical care where no one else will. Your donation gives a child surgery, a family clean water, a community a fighting chance against disease. This is an opportunity to make your giving count where it's needed most. Visit msf.org.za/sadaqa, that's SADAQAH, and donate today. Doctors Without Borders, we go there.
6: Rejuvenating media day by day. This is Salam Media.
0: जी वेलकम करते हैं आपको मिड मॉर्निंग टॉक विद मरियम हाशमी फ्रॉम जोहान्सबर्ग सलाम मीडिया और उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा. हमारे साथ मौजूद है नीलम असलम लंदन से और उनसे हम बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे हैं कि किस तरह इस्लामोफोबिया को रोका जा सकता है, ये जो फोबिया है इसको ख़त्म किया जा सकता है, एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो पूरी दुनिया को दिया जा सकता है. अच्छा नीलम, आपसे बात हुई इस्लामोफोबिया पे, एक बड़ा खूबसूरत आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी. डेफिनेटली आपका डाइवर्स एक्सपीरियंस है, अब थोड़ी आपसे आपकी गुफ्तगू की जाए ज़रा कि जो डाइवर्स एक्सपीरियंस है आपका. माशाल्लाह पाकिस्तान में आपने बहुत काम किया, जर्नलिज्म में आपने माशाल्लाह बहुत कामयाबी दिखाई है, बहुत स्किल्स दिखाई हैं और उसके बाद आप माशाल्लाह यूके में बेस्ड हैं. तो आप क्या समझती हैं ये जो जर्नलिज्म है ये कंट्री टू कंट्री डिफ़िकल्ट है, डिफरेंट है, इसके चैलेंजेस डिफरेंट है, और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
1: आई थिंक अपना जर्नलिज्म जो है वो ज़्यादा कमर्शलाइज मैं कह सकती हूँ कि हो गई है पूरी दुनिया में. अभी भी जो लोग जर्नलिज्म करना चाहते हैं और जर्नलिज्म को अंडरस्टैंड करते हैं कि जर्नलिज्म क्या है, एक खबर को रिपोर्ट करना, एक इशू को उठाना, किसी इवेंट के ऊपर रिपोर्ट करना, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना, ये जर्नलिज्म है. लेकिन कमर्शलाइज अब मैं कह रही हूँ किस सेंस में हो गई, अब एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वो भी खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं और वो अपने अंदाज में कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छा ही है कि वो इश्यूज को उठाते हैं. लेकिन उस खबर की क्या सेंसिटिविटी है, वो जो हम कहते थे कि मीडिया एथिक, वो कहीं ऑब्वियसली उनके पास, वी कांट ब्लेम देम, उनके पास वो एजुकेशन नहीं है. तो हर कोई इंसान जिसके पास एक कैमरा आ गया, अच्छा जिसके पास महंगे तरीन फोन आ गया है, जिसने अच्छे तरीन माइक्स ले लिए हैं, वो अब एक जर्नलिस्ट बन गया. तो पहले तो हम ये डिसाइड कर लेंगे कौन जर्नलिस्ट है या नहीं है. जो नहीं है जर्नलिस्ट, मैं उसको कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही, लेकिन उनकी जो फील्ड है उसको सही तरह से डिफाइन होना चाहिए. पाकिस्तान में इस वक्त जर्नलिज्म हो रही है, गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों की मैं एग्जांपल दूंगी, जो गवर्नमेंट का नैरेटिव है उसको बढ़ाना आगे, उसको स्प्रेड करना, उसके ऊपर बात करना, पाकिस्तान में इस लेवल की जर्नलिज्म हो रही है. जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होती थी, वो जो लोगों के इशूज से मुतालिक जर्नलिज्म होती थी, वो बहुत कम हो गई है. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म हो गई है, लेकिन 80% जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो चैनल आपको यूट्यूब के जरिए से दुनिया के किसी भी हिस्से में अवेलेबल है, और वो पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स भी हैं, सारे सैटेलाइट चैनल्स हैं, उनमें 80% जो जर्नलिज्म हो रही है वो सिर्फ गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट की जो भी न्यूज है उसको बताना है एज इट इज, जैसा वहां से आया है. ये भी जर्नलिज्म की एक फॉर्म जरूर है, लेकिन इसको हम ये कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन बन गए. और मीडिया कभी भी कोई भी चैनल, कोई भी न्यूज वेबसाइट, किसी भी इदारे या किसी भी हम मुल्क का स्पोक्स पर्सन नहीं हो सकता, वरना उसके लिए एक अलग टर्म यूज होती है हर कंट्री में, स्टेट मीडिया. तो वो स्टेट मीडिया चैनल एक ही होता है सारे दुनिया को. तो इस वक्त पाकिस्तान में तो ये डिलेमा है सबसे बड़ा. यहाँ तक जहां तक बात है बर्तानिया की, बर्तानिया में अगर हम इसको मजीद थोड़ा सा कंपार्टमेंटलाइज कर लें कि एक तो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो किस तरह से यहाँ पे सहाफत कर रहा है, तो उनकी सहाफत पाकिस्तान में होने वाली सहाफत से भी जो है वो मैं कह सकती हूँ कि थोड़ी सी बुरी जा रही है, क्योंकि वो भी सहाफत को उन्होंने सिर्फ इवेंट्स को कवरेज की हद तक महदूद कर लिया है. इंडिया में एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है पापराजी, दुनिया भर में यूज होती है कि वो कुछ रिपोर्टर्स हैं जो कि अगर कोई बॉलीवुड स्टार आ गया तो उसके जिम के बाहर भी पाए जाएंगे, उसके वो कहीं लंच या कहीं गए हैं वहां पे भी पाए जाएंगे, इवेंट की कवरेज करते भी पाए जाएंगे, और तमाम जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं उनको भी एज सेलिब्रिटीज ट्रीट करेंगे. जो सहाफी होता है वो चाहे कितनी भी बड़ी शख्सियत उसके सामने आ जाए वो उसको सेलिब्रिटी के तौर पर ट्रीट नहीं करता,
0: सही.
1: वो उसको एक खबर के तौर पर ट्रीट करता है. तो वो पाकिस्तानी डायस्पोरा की यहाँ पे जो जर्नलिज्म उसका अहवाल है. बाकी बर्तानिया का जो बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया है, आई थिंक पैलेस्टाइन को छोड़ के उसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं ये बहुत फेयर जर्नलिज्म करते हैं, बहुत क्वालिटी जर्नलिज्म होती है, बहुत अच्छा काम हो रहा है. डॉक्यूमेंट्रीज जो बन रही हैं बहुत अच्छी हैं. चैनल 4 की डॉक्यूमेंट्रीज को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं. BBC बहुत ज्यादा इन डेप्थ रिपोर्टिंग करता है बहुत सारे इश्यूज में. यहाँ का मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो सिर्फ डिसऑनेस्टी की है वो पैलेस्टाइन के इशू के ऊपर की है, या फिर हम कह सकते हैं अगर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं कि जब मुस्लिम इश्यूज आते हैं तो वहां पर ऐसा लगता है कि ये या तो उनको रिपोर्ट करना भूल गए हैं, या उनको जो जिस तरह से उस इवेंट की रिपोर्टिंग होनी चाहिए, जितना एयर टाइम उसको मिलना चाहिए मुस्लिम स्टोरीज को, उतना नहीं दिया जाता. तो कमियां हर कोताहियां हर जगह होती हैं. तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि बेसिकली क्या डिफरेंस है पाकिस्तानी मीडिया में और बर्तानिया में.
0: सही, और यही हमारा मैसेज होगा कि जब भी आप जर्नलिज्म करें फेयर जर्नलिज्म ज़रूर होना चाहिए, अपनी कवरेज जो है आप ज़रूर करें, और उसका जो प्रेशर है डेफिनेटली ये प्रेशर जो है हर लेवल पे होता है, उस प्रेशर को ज़रा तरीके से मेंटेन करें. अच्छा नीलम, जाते जाते बस यही कि आपसे कि अच्छा कोई मैसेज दें, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं ज़रूर पूछना चाह रही थी कि जो नेगेटिव न्यूज़ है समटाइम उनको बहुत ज़्यादा टेंशन मिलती है, और उसकी निस्बत जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो कहीं बहुत पीछे रह जाती है. तो ज़ाहिर है कंट्री का एक इमेज जो है वो नेगेटिव बन जाता है, कि नेगेटिव खबरें दिन ब दिन आती जाती हैं. तो उस पर जनाब जी क्या कर सकते हैं, क्या मुस्बत तब्दीली हम ला सकते हैं, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और साथ ही अपना मैसेज भी दीजिएगा हमारी न्यू जनरेशन को.
1: मैं इसमें ये कह सकती हूँ कि जो नेगेटिव न्यूज है वो तो नेगेटिव है ही है, उसको आप पॉजिटिव करके कभी रिपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी अपनी प्रोफेशन के साथ डिसऑनेस्टी होगी. अगर कहीं किसी कंट्री में कुछ बुरा हो रहा है तो वो एज इट इज ही रिपोर्ट होगा. लेकिन लोग जो हैं उनका अच्छाई के ऊपर भरोसा रहे, और एक वो जो उम्मीद बहार है
0: जी.
1: वो रहे, उसके लिए आप उस कंट्री में यकीनन कुछ अच्छा भी हो ही रहा होगा, उस सोसाइटी में कुछ अच्छा हो ही रहा होगा. पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन और एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं. पाकिस्तान में अब्दुल सत्तार ईदी भी पैदा हुए थे, पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी पैदा हुए थे, पाकिस्तान में आतिफ असलम भी पैदा हुए हैं, पाकिस्तान में नुसरत फतेह अली खान भी पैदा हुए हैं, और इस तरह के और बहुत सारे जो हमारे डायमंड्स हैं अनसंग हीरोज भी होंगे जिनका शायद अभी कोई नाम भी नहीं लेता, जो कि बड़ा बड़ा अच्छा काम भी कर रहे होंगे. तो उनको भी निकालने मेहनत करनी पड़ती है, हो सकता है वो सोशल मीडिया पे उतने एक्टिव ना हो, उनको निकाल के सामने लाएं तो वो मुस्बत खबर हो जाएगी. तो सबको पता चल जाएगा कि सोसाइटी में जहां बुराई है तो ये सोसाइटी हम सोचते ना खड़ी कैसी है, पाकिस्तान चल कैसे रहा है. तो ये इन्हीं अनसंग हीरोज की बदौलत और जो बहुत ऑनेस्टी के साथ और सिंसेरिटी के साथ काम कर रहे हैं मुल्क के लिए भी, अपने लोगों के लिए भी, इनकी वजह से, इनकी दुआओं की वजह से और इनकी अच्छाई की वजह से पाकिस्तान खड़ा है. तो उन स्टोरीज को भी सामने लाया और वो भी सुनाया अपने नाज़रीन.
0: क्या बात है, बहुत शुक्रिया नीलम, आपके साथ बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू रही और बड़ा अच्छा आपका पैगाम जो है वो हमें मिला कि जहाँ आप नेगेटिव न्यूज़ पे बहुत ध्यान देते हैं वहाँ तकरीबन उस कंट्री की पॉजिटिव व्यूज़ जो है, पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो भी आप ज़रूर निकालें, उनके लेजेंड्स को आप याद रखें, उनकी मेहनत और कोशिशों को याद रखें जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के लिए की है। तो हमारी ये छोटी सी कोशिश थी जैसे कि हम यहाँ जोहान्सबर्ग से अपने मुल्क को अपनी ज़ुबान को प्रमोट कर सकें वो हमने किया, अब आपकी कोशिश की बारी, आप ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया नीलम, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत दुआ है आपके लिए कि अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ और कामयाबी करे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। जी ये थी हमारे साथ नीलम असलम, और नीलम असलम ने हमें बहुत ज़बरदस्त जो है मैसेज दिया कि किस तरह हम जो है अपने मुल्क को, अपने उसके अच्छे इमेज को बरकरार रख सकते हैं, न सिर्फ अपने मुल्क को बल्कि आप जहाँ रह रहे हैं उस मुल्क की भी अच्छी न्यूज़, अच्छी नेमतों को जो है आप याद रखें ताकि जो है आपको पल पल याद रहे कि अल्लाह सुभान व तआला ने हमें कितना नवाजा है, उसके एक पानी की एक बूंद से लेकर उसकी चलती सांसों तक जो है वह हम उसकी नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकते। यही हमारा आज का मैसेज था, यही हमारा आज का मकसद था। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा, और अपना जो है फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसे जो है आप अपनी ज़िंदगियों में बेहतरी लाते हैं, क्या अगर पॉजिटिव बात है, जो अगर आपको कोई नेगेटिव बात परेशान कर रही है तो उसको पॉजिटिविटी की तरफ आप कैसे लेकर आते हैं, क्या उसके मिथ्स हैं और क्या आप उनसे कैसे जो है आप उनसे नबर्द आज़मा होते हैं और उनसे जो है आप कैसे कोप करते हैं। ये तमाम फैक्टर्स हैं, ये तमाम बातें हैं जो एज अ पर्सनैलिटी हमें सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए ताकि हम खुद भी समझें, खुद भी एक पॉजिटिव मैसेज सोसाइटी के लिए, मुल्क के लिए और इंटरनेशनल लेवल पर वो है पूरी दुनिया के लिए जो है हम वो ला सकते हैं। हमारा ये प्रोग्राम जो था अब इख्तिताम को पहुंचता है, इसका मकसद जो है वो मैं जैसे पहले बता चुकी हूँ यही था कि हम एक पॉजिटिव मैसेज जो है पूरी दुनिया को दे सकें और अपना जो है एक राह दिया जो है वो हम जला सकें। तो उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमारे चैनल को जो है वो ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाइए मरियम हाशमी और उसकी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।

0: Get to know the Big Five or cruise on an elephant safari game drive. Interact with lion and tiger cubs and enjoy world-class halal cuisine while we pamper you during your five-star stay. Indulge in the true African experience. For reservations, call now on 042-203-1400 or visit kwantu.co.za. The Kwantu Private Game Reserve, the place of gathering.
1: Across Sudan, starvation is tightening its grip. With rising food prices and widespread malnutrition, 8.7 million people are now facing emergency or famine-level hunger. As the conflict intensifies and aid routes narrow, families in Sudan are running out of options and time. The Al Imdad Foundation is delivering life-saving humanitarian aid to those most at risk. Stand with Sudan. Donate online at alimdad.com or call 0861 786 243 for more information.
2: World-class financial services only at Safi Global, your financial partner. If you are looking for Islamic, Sharia and ethical financial products, look no further. Sapphire Global offers a wide range of financial service offerings from short-term to life and investments. A full service center with all financial requirements under one brand. Our highly skilled and experienced consultants are ready to help protect your financial future. Contact us on 041-001-0184 or visit our website on www.sapphireglobalfs.com. Sapphire Global is an authorized financial services provider.
3: Rejuvenating media day by day. This is Salam Media.
4: जी वेलकम करते हैं आपको मिड मॉर्निंग टॉक विद मरियम हाशमी फ्रॉम जोहान्सबर्ग सलाम मीडिया और उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा. हमारे साथ मौजूद है नीलम असलम लंदन से और उनसे हम बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू कर रहे हैं कि किस तरह इस्लामोफोबिया को रोका जा सकता है, ये जो फोबिया है इसको खत्म किया जा सकता है, एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो पूरी दुनिया को दिया जा सकता है. अच्छा नीलम, आपसे बात हुई इस्लामोफोबिया पे, एक बड़ा खूबसूरत आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी. डेफिनेटली आपका डाइवर्स एक्सपीरियंस है, अब थोड़ी आपकी आपसे आपकी गुफ्तगू की जाए जरा कि जो डाइवर्स एक्सपीरियंस है आपका. माशाल्लाह पाकिस्तान में आपने बहुत काम किया, जर्नलिज्म में आपने माशाल्लाह बहुत कामयाबी दिखाई है, बहुत स्किल्स दिखाई हैं और उसके बाद आप माशाल्लाह यूके में बेस्ड हैं. तो आप क्या समझती हैं ये जो जर्नलिज्म है ये कंट्री टू कंट्री डिफिकल्ट है, डिफरेंट है, इसके चैलेंजेस डिफरेंट है और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
5: आई थिंक अपना जर्नलिज्म जो है वो ज्यादा कमर्शलाइज मैं कह सकती हूँ कि हो गई है पूरी दुनिया में. अभी भी जो लोग जर्नलिज्म करना चाहते हैं और जर्नलिज्म को अंडरस्टैंड करते हैं कि जर्नलिज्म क्या है, एक खबर को रिपोर्ट करना, एक इशू को उठाना, किसी इवेंट के ऊपर रिपोर्ट करना, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना, ये जर्नलिज्म है. लेकिन कमर्शलाइज अब मैं कह रही हूँ किस सेंस में हो गई, अब एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वो भी खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं और वो अपने अंदाज में कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छा ही है कि वो इश्यूज को उठाते. लेकिन उस खबर की क्या सेंसिटिविटी है, वो जो हम कहते थे कि मीडिया एथिक, वो कहीं ऑब्वियसली उनके पास, वी कांट ब्लेम देम, उनके पास वो एजुकेशन नहीं है. तो हर कोई इंसान जिसके पास एक कैमरा आ गया, अच्छा जिसके पास महंगे तरीन फोन आ गया है, जिसने अच्छे तरीन माइक्स ले लिए हैं, वो अब एक जर्नलिस्ट बन गया. तो पहले तो हम ये डिसाइड कर लेंगे कौन जर्नलिस्ट है या नहीं है. जो नहीं है जर्नलिस्ट, मैं उसको कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही, लेकिन उनकी जो फील्ड है उसको सही तरह से डिफाइन होना चाहिए. पाकिस्तान में इस वक्त जर्नलिज्म हो रही है, गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों की मैं एग्जाम्पल दूंगी, जो गवर्नमेंट का नैरेटिव है उसको बढ़ाना आगे, उसको स्प्रेड करना, उसके ऊपर बात करना, पाकिस्तान में इस लेवल की जर्नलिज्म हो रही है. जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होती थी, वो जो लोगों के इश्यूज से मुतालिक जर्नलिज्म होती थी, वो बहुत कम हो गई है. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म हो गई है, लेकिन 80% जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो चैनल आपको यूट्यूब के जरिए से दुनिया के किसी भी हिस्से में अवेलेबल है और वो पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स में है, सारे सैटेलाइट चैनल्स हैं, उनमें 80% जो जर्नलिज्म हो रही है वो सिर्फ

0: गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट की जो भी न्यूज है उसको बताना है एज इट इज, जैसा वहां से आया है. ये भी जर्नलिज्म की एक फॉर्म जरूर है, लेकिन इसको हम ये कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन बन गए. और मीडिया कभी भी कोई भी चैनल, कोई भी न्यूज वेबसाइट, किसी भी इदारे या किसी भी मुल्क का स्पोक्स पर्सन नहीं हो सकता, वरना उसके लिए एक अलग टर्म यूज होती है हर कंट्री में, स्टेट मीडिया. तो वो
1: राइट
0: स्टेट मीडिया चैनल एक ही होता है, सारे नहीं होते. तो इस वक्त पाकिस्तान में तो ये डिलेमा है सबसे बड़ा. यहाँ तक जहां तक बात है बरतानिया की, बरतानिया में अगर हम इसको मजीद थोड़ा सा कंपार्टमेंटलाइज कर लें कि एक तो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, वो किस तरह से यहाँ पे सहाफत कर रहा है, तो उनकी सहाफत पाकिस्तान में होने वाली सहाफत से भी जो है वो मैं कह सकती हूँ कि थोड़ी सी बुरी जा रही है, क्योंकि वो भी सहाफत को उन्होंने सिर्फ इवेंट्स को कवरेज की हद तक महदूद कर लिया है. इंडिया में एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है पापराजी, दुनिया भर में यूज होती है, कि वो कुछ रिपोर्टर्स हैं जो कि अगर कोई बॉलीवुड स्टार आ गया तो उसके जिम के बाहर भी पाए जाएंगे, उसके वो कहीं लंच या कहीं गए हैं वहां पे भी पाए जाएंगे, इवेंट की कवरेज करते भी पाए जाएंगे, और तमाम जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं उनको भी एज सेलिब्रिटीज ट्रीट करेंगे. जो सहाफी होता है वो चाहे कितनी भी बड़ी शख्सियत उसके सामने आ जाए, वो उसको सेलिब्रिटी के तौर पर ट्रीट नहीं करता, वो
1: सही
0: उसको एक खबर के तौर पर ट्रीट करता है. तो वो पाकिस्तानी डायस्पोरा की यहाँ पे जो जर्नलिज्म उसका अहवाल है. बाकी बरतानिया का जो बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया है, आई थिंक पैलेस्टाइन को छोड़ के उसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं ये बहुत फेयर जर्नलिज्म करते हैं, बहुत क्वालिटी जर्नलिज्म होती है, बहुत अच्छा काम हो रहा है. डॉक्यूमेंट्रीज जो बन रही है बहुत अच्छी है, चैनल 4 की डॉक्यूमेंट्रीज को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, BBC बहुत ज्यादा इन डेप्थ रिपोर्टिंग करता है बहुत सारे इश्यूज में. यहाँ का मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो सिर्फ डिसऑनेस्टी की है वो पैलेस्टाइन के इशू के ऊपर की है, या फिर हम कह सकते हैं अगर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं कि जब मुस्लिम इश्यूज आते हैं तो वहां पर ऐसा लगता है कि ये या तो उनको रिपोर्ट करना भूल गए हैं, या उनको जो जिस तरह से उस इवेंट की रिपोर्टिंग होनी चाहिए, जितना एयर टाइम उसको मिलना चाहिए मुस्लिम स्टोरीज को, उतना नहीं दिया जाता. तो कमियां हर कोताहियां हर जगह होती हैं. तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि बेसिकली क्या डिफरेंस है पाकिस्तानी मीडिया में और बरतानिया में.
1: सही, और यही हमारा मैसेज होगा कि जब भी आप जर्नलिज्म करें फेयर जर्नलिज्म जरूर होना चाहिए, अपनी कवरेज जो है आप जरूर करें, और उसका जो प्रेशर है डेफिनेटली ये प्रेशर जो है हर लेवल पे होता है, उस प्रेशर को जरा तरीके से मेंटेन करें। अच्छा नीलम, जाते जाते बस यही कि आपसे कि अच्छा कोई मैसेज दें, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं जरूर पूछना चाह रही थी कि जो नेगेटिव न्यूज है समटाइम उनको बहुत ज्यादा टेंशन मिलती है, और उसकी निस्बत जो पॉजिटिव न्यूज है वो कहीं बहुत पीछे रह जाती है, तो जाहिर है कंट्री का एक इमेज जो है वो नेगेटिव बन जाता है कि नेगेटिव खबरें दिन ब दिन आती जाती हैं। तो उस पे जनाब जी क्या कर सकते हैं, क्या मुस्बत तब्दीली हम ला सकते हैं, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और साथ ही अपना मैसेज भी दीजिएगा हमारी न्यू जनरेशन को।
0: मैं इसमें ये कह सकती हूँ कि जो नेगेटिव न्यूज है वो तो नेगेटिव है ही है, उसको आप पॉजिटिव करके कभी रिपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी अपनी प्रोफेशन के साथ डिसऑनेस्टी होगी. अगर कहीं किसी कंट्री में कुछ बुरा हो रहा है तो वो एज इट इज ही रिपोर्ट होगा, लेकिन लोग जो हैं उनका अच्छाई के ऊपर भरोसा रहे और एक वो
1: क्या
0: जो
1: बात
0: उम्मीद बहार है
1: जी,
0: वो रहे, उसके लिए आप उस कंट्री में यकीनन कुछ अच्छा भी हो ही रहा होगा, उस सोसाइटी में कुछ अच्छा हो ही रहा होगा. पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन और एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, पाकिस्तान में अब्दुल सत्तार एडी भी पैदा हुए थे, पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी पैदा हुए थे, पाकिस्तान में आतिफ असलम भी पैदा हुए हैं, पाकिस्तान में नुसरत फतेह अली खान भी पैदा हुए हैं, और इस तरह के और बहुत सारे जो हमारे डायमंड्स हैं अनसंग हीरोज भी होंगे जिनका शायद अभी कोई नाम भी नहीं लेता, जो कि बड़ा बड़ा अच्छा काम भी कर रहे होंगे. तो उनको भी निकालने मेहनत करनी पड़ती है, हो सकता है वो सोशल मीडिया पे उतने एक्टिव ना हो,
1: सही
0: उनको निकाल के सामने लाए तो वो मुस्बत खबर हो जाएगी, तो सबको पता चल जाएगा कि सोसाइटी में जहाँ बुराई है तो ये सोसाइटी हम सोचते हैं ना खड़ी कैसी है, पाकिस्तान चल कैसे रहा है, तो ये इन्हीं अनसंग हीरोज की बदौलत और जो बहुत ऑनेस्टी के साथ और सिंसेरिटी के साथ काम कर रहे हैं मुल्क के ये भी अपने लोगों के लिए भी, इनकी वजह से, इनकी दुआओं की वजह से और इनकी अच्छाई की वजह से पाकिस्तान खड़ा है. तो उन स्टोरीज को भी सामने लाया और वो भी सुनाए अपने नाज़रीन.
1: क्या बात है, बहुत शुक्रिया नीलम, आपके साथ बहुत जबरदस्त गुफ्तगु रही और बड़ा अच्छा आपका पैगाम जो है वो हमें मिला कि जहां आप नेगेटिव न्यूज पे बहुत ध्यान देते हैं वहां तकरीबन उस कंट्री की पॉजिटिव व्यूज जो है, पॉजिटिव न्यूज जो है वो भी आप जरूर निकालें, उनके लेजेंड्स को आप याद रखें, उनकी मेहनत और कोशिशों को याद रखें जो उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के लिए की है। तो हमारी ये छोटी सी कोशिश थी जैसे कि हम यहाँ जोहान्सबर्ग से अपने मुल्क को अपनी जुबान को प्रमोट कर सकें वो हमने किया, अब आपकी कोशिश की बारी, आप जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया नीलम, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत दुआ है आपके लिए कि अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज्यादा आसानियां और कामयाबी करे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।
2: When the perfect blend of stylish decor, exquisite halal cuisine and warm hospitality come together, it could only mean Al Bayt Lodge, your true home away from home. Al Bayt is the ideal heaven for families, business people and tourists with its 4-star family rooms and other luxurious facilities. Conveniently situated close to Port Elizabeth Airport, the beach and other amenities, your stay will be truly unforgettable as you'll be taking home lasting memories of the warm hospitality, the serenity and tranquility that Al Bayt has to offer. For reservations, call 041-583-6415 or visit www.albaytlodge.co.za.
3: Dad, these Frimax chips are so tasty.
4: Wow, that really takes me back. My dad bought me a Frimax chips every day after school. They were my favorite when I was your age as well. Quality is at the very heart of what we do, and that's why we ensure that every Frimax packet is filled with the beautiful goodness and flavor-packed taste that you've come to expect from us since 1982. Frimax, from generation to generation.
5: Gaza needs your support more than ever. Homes have been shattered, and families have lost everything. With your support, our teams are delivering clean water tankers, feeding the hungry, and assisting orphans who have no one left. Let us give Gaza whatever help we can. African Muslims Agency, empowering, educating, inspiring.
6: Are you banking with convenience, transparency and flexibility? With Al Baraka Bank's transactional banking account, you can enjoy convenient everyday banking designed around your needs. Benefit from zero fees on point-of-sale transactions and manage your banking easily through Al Baraka's secure mobile banking app and internet banking platform. From everyday payments to managing your personal or business banking, Al Baraka makes banking simple, transparent and convenient. Visit albaraka.co.za to learn more. Al Baraka, your partner bank. Al Baraka Bank Limited is an authorized financial services and credit provider.
7: Right now, in lands many of us feel deeply connected to, a mother holds a sick child, worried and fearful as she knows her nearest hospital has been destroyed. This is the mother we go beyond borders to reach. Doctors Without Borders is there in the world's toughest places. We go where others can't or won't, and we go immediately. When you give to us, we go even further. Visit msf.org.za/sadaqa, that's SADAQAH, and support Doctors Without Borders today. Doctors Without Borders, we go there.
2: Connect and stay ahead with Salam Media. This is Salam Media, coming to you live from South Africa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Mere khuda mere lafzo bayan mein zahir ho, isi shikasta o basta zabaan mein zahir ho. Main surkhuru nazar aaun kalam ho ke sakoot, teri ata mere namo nishaan mein zahir ho. Assalamu alaikum, this is Maryam Hashmi with program Mid Morning Talk. Ji haan, aaj ka ye khususi urdu special transmission jo hai wo Salam Media ke zariye aap tak pahunchaya ja raha hai, aur jiska main maqsad yahi hai ki hum na sirf mukhtalif zubanon ko promote kar saken, उसमें बात कर सकें, बल्कि हम लोगों को जो इस कम्युनिटी से रिलेटेड हैं, जो इस जुबान से वाबस्ता हैं, उनको जो है एक दूसरे के करीब ला सकें। जैसे हम बात कर रहे हैं कि वी आर लाइव फ्रॉम जोहान्सबर्ग, एंड जोहान्सबर्ग एक ऐसा डाइवर्स सिटी है साउथ अफ्रीका का जिसमें माशाल्लाह बहुत सारे कल्चर्स जो हैं वो रहते हैं, और डिफरेंट जुबानें हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, और उन लैंग्वेजेस के साथ क्या होता है कि हम कम्युनिकेट करते हैं। तो हर जुबान खूबसूरत है, हर लैंग्वेज जो है वो बेहतरीन है, और कोशिश हमारी आज के इस खुसूसी स्पेशल उर्दू ट्रांसमिशन की यही है कि हम ऐसी खवातीन को, ऐसे लोगों को جو ہے وہ کنیکٹ کر سکے اپنے اس پروگرام کے ذریعے جو اردو زبان سے محبت رکھتے ہیں وابستگی رکھتے ہیں دل سے جو ہے وہ اس زبان سے جڑے ہیں اس کلچر سے جڑے ہیں اور اپنی بہت ساری ایسی خصوصیات ہیں جو کہ اپنے اس پروگرام کے ذریعے وہ ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اپنا کوئی میسج جو ہے وہ اس پروگرام کے ذریعے دینا چاہتے ہیں جی ہمارے ساتھ اسٹے ٹیونڈ رہیے گا 11 سے لے کر 1 بجے تک یعنی کہ 11 to 1 PM میں آپ کے ساتھ رہوں گی مڈ مارننگ ٹاک میں آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ہم سے بات کر سکتے ہیں ہمیں بتا سکتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا کو کوئی پیغام آپ اچھا دینا چاہتے ہیں امن کا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ اس پروگرام کے ذریعے دے سکتے ہیں جی پروگرام کی ہم آج شروعات کرتے ہیں اور اس کا فارمیٹ سمپلی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم نے آج اس پروگرام میں ڈفرنٹ لوگوں کو کنیکٹ کیا ہے اور ڈفرنٹ کنٹریز سے کنیکٹ کیا ہے جی ہاں موسٹلی ہماری جو گیسٹ ہیں آج کے پروگرام کی وہ ہیں یو کے سے بلانگ کرتی ہیں جی ہاں موسٹلی لنڈن سے بلانگ کرتی ہیں ایک ہمارے پاس جو گیسٹ ہیں وہ ہمارے پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ڈفرنٹ کلچرز جو ہیں ڈفرنٹ کنٹریز جو ہیں ان کو سب کو کنیکٹ کیا جائے اور آپ تک ان کی آواز جو ہے پہنچائی جائے شروعات کرتے ہیں اپنے پروگرام کی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری ایک بہت پیاری گیسٹ ہیں اور گیسٹ کی تعریف میں آپ کو کیا بتاتی چلوں کیونکہ سم ٹائم ہوتا یہ ہے کہ آپ بہت اسکلڈ ہوتے ہیں بہت کریٹیو ہوتے ہیں اور آپ میں بہت ساری تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں آپ اپنی ان صلاحیتوں کو آزما کر اس کو کام میں لا کر آپ بہت کچھ بڑا کر سکتے ہیں جی ہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا عثمان پاکستان لاہور سے اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ ایک بہت اچھی آرٹسٹ تھیں بہت اچھی پینٹر تھیں بہت کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں اچیو کیا بہت ایوارڈز جو ہیں انہیں ملے ہیں اور جس نے ان کی مطلب کارکردگی کو بہت زیادہ سراہا گیا ہے گورنمنٹ لیول پہ ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ اپریشیٹ کیا گیا ہے تو ان کی آج کارکردگی کی کہانی ہم ان سے سنیں گے کیونکہ اپنے انہوں نے اس پیشن کو آرٹ کے پیشن کو انہوں نے بزنس میں کنورٹ کیا ہے یہ بڑا ایک نیو تھنگ ہے میرا خیال ہے ہم سب کے لیے بہت سارے جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک بڑی موٹیویشن ہے کہ آپ اپنے پیشن کو اپنے بزنس میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں تو یہ جو آج کی سٹوری ہے اٹس اونلی بیکاز آف دیٹ کہ ہم دیکھیں کہ اگر آپ کا پیشن ہے آپ کا آرٹ ہے اس میں کوئی پیشن اور اس کو اپنے بزنس میں کنورٹ کرنا ہے ایز اے کیفے جی ہاں انہوں نے کیفے بنایا غنی آرٹس کے نام سے اور اس کیفے کو انہوں نے جو ہے بہت رنگ دیا ہے بڑا خوبصورت پینٹ کے رنگوں کی طرح کا انہوں نے اس کو رنگ دیا ہے اور کس طرح کی یہ سوچ ان کے ساتھ آئی انہوں نے کیسے اس چیز کو اسٹارٹ کیا کیا کیا مشکلات آئیں یہ سب ہم ان سے ڈسکس کریں گے جی ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں ثنا عثمان کو السلام علیکم ثنا
8: وعلیکم السلام مریم کیسی
1: ہیں آپ جی ثنا میں بالکل ٹھیک ہوں سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے پاکستان کے ویدر کی کیا کنڈیشن ہے وہاں پہ جی ویدر جو ہے آپ کو پتا ہے جوہانسبرگ کا ویدر بہت خوبصورت ہے آج تو بہت اچھا جو ہے ماشاء اللہ سنی ڈے ہے تو پاکستان میں سچویشن کیسی جا رہی ہے ویدر کی
8: پاکستان میں اس ٹائم مونسون چل رہا ہے اگر ویدر کو دیکھ کے اکارڈنگ بات کی جائے تو پاکستان میں تو خیر ملا جلا موسم چل رہا ہے گرمی بھی ہے اور خوشگواریت بھی ہے خوبصورتی بھی ہے اور
1: گرمی تو پتا یہ جو ہے یہی بڑی خوبصورتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کی کہ کتنے خوبصورت جو ہے انہوں نے جو ہے یہ رنگ اور موسم جو ہے وہ بنائے ہیں بات ہو رہی ہے رنگوں کی تو ثنا بتائیے گا کہ آپ کا جو پیشن تھا آرٹ میں سب سے پہلے آپ کا انٹرسٹ آرٹ میں کیسے ہوا پھر اس نے آرٹ کو آپ نے ایک آرٹ کیفے میں کیسے کنورٹ کیا ذرا بتائیے گا ہمیں
8: بیسکلی میں خود ایک آرٹسٹ ہوں جیسے کہ آپ پہلے انٹرو دے چکی ہیں کہ میں جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ بائی بون آرٹسٹ ہوتا ہے وہ کسی بھی فیلڈ میں اپنا کریئر بنا لے لیکن اس کی جو اندر کا ایک تخلیقی انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے تو اسی طرح میں بھی آرٹسٹ ہی تھی شروع سے آرٹسٹ تھی بچپن سے آرٹسٹ تھی بہت زیادہ پینٹنگ بنائی ہینڈ ورک بہت زیادہ کیے اور ماسٹرز میں نے پھر ہسٹری میں کیا لیکن بات پھر وہیں ختم ہو گئی کہ جو آپ کا اندر کا انسان ہوتا ہے بیسکلی وہی آپ کا اثر ہوتا ہے اور میرے اندر سے میں آرٹسٹ تھی تو پھر میں نے پینٹنگ اسی کو دیکھ کے اس کو پینٹنگ کو شوق کے ساتھ ساتھ پروفیشن بھی کی طرف پھر میں لے آئی
1: رائٹ سو یہ جو آپ کا پروفیشن ہے جیسے میں آپ کے پیچھے دیکھ رہی ہوں ماشاء اللہ بہت کریٹو آپ کی چیزیں ہیں جو آپ نے کریٹ کیا ہے تو اس کیفے کا آئیڈیا آپ کو کیسے آیا اور آپ نے کیا سوچا کہ آپ کے اس آرٹ کو کس طرح سے لوگوں تک آسانی سے پہنچایا جائے کچھ اور بھی کر سکتے تھے آپ
8: بیسکلی میرا جو غنیہ آرٹ کا جو ایک آئیڈیا تھا मैं अपना एक ऐसा आउटलेट बनाना चाह रही थी जहाँ पे मैं अपना आर्ट को डिस्प्ले कर सकूँ, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं एक आर्ट कर रही हूँ, मैं एक हुनर मेरे अंदर है, मैं अपनी पेंटिंग्स बना रही हूँ, तो मुझे उसको प्राइवेटली कैसे शोकेस करना। तो फिर जब मैंने अपना एक आउटलेट बनाने का सोचा जहाँ पे अपना आर्ट तकलीफ सारी दिखा सकती हूँ वहाँ पे चीज़ों को, फिर जब मैं वहाँ खड़ी हुई तो मुझे पता लगा कि नहीं यार, आर्ट तो खाने और पीने के बगैर तो काफी नहीं होता कि जहाँ पे हम बैठें, गप शप करें, चाय कॉफी पिएं और साथ अपने आर्ट को भी इंजॉय करें।
1: अच्छा सर, ये भी बड़ा कहा जाता है कि जो आर्ट का और कॉफी का बड़ा जो है वो बिल्कुल गहरा ताल्लुक है, आप क्या समझती हैं? जैसे मैंने आपकी बात किया कि आपने आर्ट को अपने प्रमोट करने के लिए कैफे का ही इंतखाब किया, तो आप भी ऐसी कुछ किसी आदत है आपको, कॉफी एंड आर्ट जो है ये आपके साथ साथ है?
8: बिल्कुल ऐसे ही है, जो आर्टिस्ट है वो पीने चाय और कॉफी का तो बहुत शौकीन है, उसे ये होता है कि आपको नए नए याद आते हैं, साथ आप एक कॉफी का सिप लेते हैं, साथ आप एक रंग लेते हैं, आप इन चीजों को मिला के एक नई क्रिएशन बनाते हैं, क्रिएटिविटी आपके अंदर से उभर के आती है। और कॉफी, आप जब तक एक इन्वायरमेंट को इंजॉयमेंट नहीं बनाएंगे ना, जब तक, क्योंकि कॉफी और चाय जो है, टी जो है, और वो है आपकी सेटिस्फेक्शन, ठीक है, आप उसको एंजॉय करेंगे, मौसम एंजॉय करेंगे, आपके अंदर आपको रंग समझ आएंगे, आपको क्रिएशन समझ आएगी, तो इन दोनों के इंतजार को मिला के मैंने सोचा कि क्यों ना एक नया एक्सपीरियंस किया जाए, ताकि लोग कॉफी भी एंजॉय करें और अपना आर्ट, मेरे आर्ट को या अपने आर्ट को जो वो बनाते हैं यहाँ बैठ के, उसको भी वो अप्रिशिएट भी करें और उसको क्रिएट भी करें।
1: सही। अच्छा सर, ना बड़ा मुश्किल होता है आइडियाज को जो है उसको अमली जामे पहनाना, उसको हकीकत में लाना, तो आपने माशाल्लाह अपने इस आर्ट को हकीकत में लेकर आई, बड़े चैलेंजेस आए होंगे, प्रॉब्लम आई होगी, तो सबसे मेन प्रॉब्लम जो आपको लगी और जो आप समझती हैं कि अगर कोई इस बिजनेस को इस तरह स्टार्ट करना चाहिए, अपने किसी भी पैशन को वो आगे लेकर चलना चाहिए, तो उन चीजों का खास तौर पर ख्याल रखें।
8: असल में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना, आपके पास आइडिया तो होता है, लेकिन जो सबसे मुश्किल चैलेंज है वो है प्लानिंग, आपका पेशेंस, आपकी मेहनत, आपकी कंसिस्टेंसी और इन्वेस्टमेंट, कि ये सारी चीजें अगर आपने अपने आइडिया को, अपने ख्वाब को पूरा करना है, तो इन सारी चीजों को साथ लेकर बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है, क्योंकि आइडिया तो आपके पास है, लेकिन जब तक उस आइडिया को आप अमली शक्ल देने के लिए, एक आपको प्रॉपर हिम्मत और हौसले की जरूरत है।
1: राइट, वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, सो विल कम बैक आफ्टर दिस वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड।
9: टुनाइट अ चाइल्ड इन अ शैक विल ट्राई टू स्लीप थ्रू द कोल्ड, नो हीटिंग, नो इंसुलेशन, जस्ट थिन वॉल्स एंड अ बाइटिंग कोल्ड। African Muslims Agency is on the ground, reaching families in informal settlements across South Africa with blankets and winter essentials. Help us spread warmth this winter. For 180 Rand, give a blanket. For 360 Rand, a full winter pack. One gift, one less night in the cold. African Muslims Agency. Empowering, educating, inspiring.
10: You South African, of course. You anxious about the future. We've got you covered. Build on your wealth portfolio with Redri Jewelers Gold Coin Exchange. Visit us at 151 Stephen Dlamini Road, Musgrave, Durban, or call us on 031-202-4700 for more information. Redri Jewelers Gold Coin Exchange, your passport to gold investment.
11: Valleys Motor Spares. We supply motor spares and accessories for all makes and models of motor cars, LDVs, buckies, trucks, and earth-moving equipment. We deliver on time, every time. Please contact us via WhatsApp on 014-592-0925 or call 014-592-0925 or visit 28 Zenderling Street, Rustenburg. Remember the name, Valleys Motor Spares.
12: You know, it's a wonder how kids get anything done these days. With all the distractions, when do they even get time to study? As a mother, all I can really do is make sure they have all they need to perform at their best. That's why I choose to include Sunfoil Triple Refined Pure Sunflower Oil with every meal I make. Naturally cholesterol-free and approved by the Heart and Stroke Foundation as part of a balanced eating plan. So whether I'm cooking, frying or baking, I know every dish will be a wholesome one. Sunfoil. Now we're cooking.
13: When disaster strikes, families lose everything in an instant. Homes destroyed, communities displaced. Hope fades into uncertainty. Our Global Emergency Fund ensures we respond without delay, delivering food, water, shelter, and healthcare to families in need. To support our Global Emergency Fund, visit islamicrelief.org.za.
14: Rejuvenating media day by day. This is Salam Media.
1: जी वेलकम बैक प्रोग्राम मिड मॉर्निंग टॉक विद मरियम हाशमी. हमारे साथ मौजूद हैं सना उस्मान, और सना उस्मान हमें बता रही हैं कि माशाल्लाह उनका जो बिजनेस है वो माशाल्लाह उन्होंने किस तरह से बिल्डअप किया. अच्छा सना, एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे लोग हेजिटेट करते हैं, घबराते हैं न्यू चीज़ को करने में, और स्पेशली अपने पैशन को, क्योंकि समटाइम ये होता है कि जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, जब आप उस पैशन, आपका कोई इंटरेस्ट है, आपका कोई पैशन है, आपकी कोई चीज़ है, आप उससे कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस ऐसे आ जाते हैं लाइफ में कि जिससे वो बिल्कुल गिव अप कर जाते हैं अपने शौक से भी और अपने काम से भी. तो आपको कुछ ऐसा कभी जिंदगी में फील हुआ कि नहीं, ये मेरा जो पैशन है इसने मुझे जिंदगी में कुछ खास वो दिया नहीं, इससे मुझे वो जो मैं चाहती थी आउटकम वो मिला नहीं, वो आया नहीं, तो आपने कभी ऐसा गिव अप सोच आई है आपकी?
15: देखिए, बिजनेस तो एक ना हर दिन के लिए एक नया लेसन देता है आपको. आपको कभी भी चीजें कभी भी आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं होती. मतलब कभी आपके फैसले मुश्किल हो जाते हैं, कभी आपके ऐसे मौके पे खड़े हो जाते हैं कि जहाँ पे आपने डिसीजन लेना वो सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है. हर चीज आपके मुताबिक नहीं होती, लेकिन आपने अपने फेलियर को अपना फेलियर नहीं समझना, उसको एक नया सबक समझ के चलना है. मेरी लाइफ में भी इस तरह के बड़ी चीजें आई हैं, अप्स एंड डाउन आती हैं, आ रही हैं, लेकिन यही वाली बात कि आपके अंदर का हौसला, हिम्मत उसको बूस्ट अप करता है, और कि नहीं, हमने इस चैलेंज को फेस करना है और हमने अपने पांव पे खड़े होके अपने बिजनेस को, अपने काम को और अपने ख्वाब को पूरा करना. तो ये चीजें तो साथ साथ चलती रहती है, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ.
1: सही. तो अच्छा सना, आपने चैलेंज की बात की है. अच्छा, मैं चाहूंगी आप अपने थोड़े से आर्ट पीसेस के बारे में भी लोगों को बताएं. जरा आप थोड़ा सा, जरा आपने कैफे की तरफ जरा रुख कीजिए, मैं थोड़े से आपके आर्ट पीसेस के बारे में बात करना चाहूंगी कि आप में क्या जो है आप बनाती हैं, किस तरह से आपकी थॉट्स हैं, आप अपने टेबल्स जो भी आपकी जो है चीजें, आप जरूर हमें दिखाइए, हमारे व्यूअर्स को, हमारे लोगों को, ताकि जो है वो देख सकें और अंदाजा कर सकें कि अगर आप इस तरह की किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए कितनी आसानियां हैं अगर आप कर सकें.
15: सबसे पहले तो आप ये एक वॉल हैंगिंग देख रहे हैं जो बिल्कुल मेरे पीछे लगी हुई है.
1: राइट.
15: दिस इज द वॉल हैंगिंग. ठीक है, इसमें थोड़ा सूफी टच दिया हुआ है, थोड़ी कैलीग्राफी दी हुई है, थोड़ा सा इसमें जरा रूहानियत वाला टच दिया हुआ है. फिर साथ ही हम इसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये टेबल राइजर है. देखिए, इसको हम एज अ टेबल के लिए भी यूज कर सकते हैं. ये सब हैंड पेंटेड है, इसके ऊपर साथ लगा हुआ है. तो इसी तरह ये मेरे पीछे जितना भी आप देखना चाहें देखेंगे, यहाँ पे बहुत सी हाउस होल्ड चीजें लगी हुई हैं, जैसे जस्ट लाइक दिस इज अ टिश्यू बॉक्सेस. ठीक है, ये टिश्यू बॉक्सेस हैं, ये वुडन ट्रेज हैं, वॉल हैंगिंग है. इसमें ये है कि मैं आपको ये आइडिया देती हूँ कि खवातीन को शौक होता है घरों को सजाने का. ठीक है, वो अपने घर को सजाना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उनको ये भी होता है कि उनको अपनी पुरानी और अपनी जहेज की चीजों से, अपनी अम्मियों की चीजों से बड़ी मोहब्बत होती है. टाइम बाय टाइम, सम टाइम के बाद चीजें अपनी रौनक, अपनी चमक खो बैठती हैं. तो जो मेरा विजन है वो ये है कि अगर आपने अपने खवातीन जो है या कोई भी, आप अपने आर्ट को वेस्ट मत करें, अपने सामान को वेस्ट मत करें. हम पुराने से पुराने फर्नीचर को भी आपको नया करके दिखा सकते हैं कि जी आपने अपनी चीज जाया नहीं करनी, आप उसको रिन्यू कर सकते हैं, आप उसको न्यू पेंट कर सकते हैं, आप उसको नया रंग, नई जिंदगी उसके अंदर फूंक सकते हैं.
1: ये बेहतरीन है, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात किया, क्योंकि जब हम अपनी पुरानी चीज़ों की बात करते हैं, अपने अम्मी की कोई प्यारी चीज़ है जो हमारे दिल से बड़ी करीब है और हम उससे जो है कनेक्ट होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारा दिल जो है खुश हो जाता है, हम उसको कहीं और वेस्ट नहीं करना चाहते या उसको कहीं और रखना नहीं चाहते. तो उसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल है जो आपने बताया. अच्छा सना, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके, आपके माइंड में क्या है? हमारे पास बड़ा शॉर्ट टाइम रह गया है, आपके साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही है, आप ज़रा बताइएगा फ्यूचर प्लान्स आपके कैफ़े के बारे में आपके क्या हैं?
15: कैफे के बारे में यही है कि ये एक जस्ट एक कैफे ना रहे, ये एक रिकग्नाइज्ड, मैं इसको क्रिएटिव प्लेटफॉर्म बनाना चाहती हूँ जहाँ पे फूड, कल्चर, बिजनेस और कम्युनिटी एक साथ आए.
16: मुस्तकबिल में मेरा यही है कि यहाँ पे क्रिएटिव इवेंट्स होते हैं, एग्जीबिशन होती हैं, वर्कशॉप होती हैं और खवातीन नौजवान सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं, अपने आर्ट को शोकेस करें यहाँ पे। और सबसे बड़ा ख्वाब मेरा यही है कि जब यहाँ आर्ट का लोग नाम सुने तो उनके पास सिर्फ एक कैफे ना आए, उनके पास अपॉर्चुनिटी, क्रिएटिविटी, क्वालिटी, इंस्पिरेशन का तस्वर उनके जहन में आए। और शायद यही पूरे सफर की सबसे बात होगी कि हम एक बिजनेस बिल्ड ना करें बल्कि हम एक लेगेसी बनाएं जो दूसरों को भी अपने ख्वाब पूरे करने के लिए इंस्पिरेशन दे।
1: ज़बरदस्त सना, ये बहुत अच्छा मैसेज था और बहुत अच्छी आपके साथ हमारी गुफ्तगू रही है। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारी न्यू जनरेशन है, जो हमारे लोग हैं, जो अपना नया कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप अपने काम में स्किल्ड हों, आपको जो है इस तरह के, अगर आप आर्ट वर्क में इंटरेस्टेड हैं, और जैसे सना ने बात की इनके कैफ़े में कि बहुत सारी वर्कशॉप्स भी होती हैं, उन वर्कशॉप्स पर आप उनको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, कुछ नया सीखिए, ताकि जो है रंगों से न सिर्फ आप खुश हों बल्कि रंगों से आपको खेलना भी आना चाहिए। आप कुछ ना कुछ उससे जरूर क्रिएटिव बना सकते हैं, क्योंकि अल्लाह सुभान व तआला की बहुत सारी नेमतें हैं जो रंगों से भरी हुई हैं। आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं माशाल्लाह, बहुत सारी ग्रीनरी है, ग्रीन कलर है, रेड कलर है, येलो कलर है, मतलब आप जितना रेनबो के कलर से भी आप निकालें चीजें, तो बहुत सारी ऐसी जिंदगी है जो रंगों से भर जाती है। और जिंदगी में रंगीनियां भी लोगों के अच्छे अखलाक से और अच्छी चीजों से, सदका जारिया से आती है। तो आप अपने इस काम को सना जारी रखिएगा और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं और उम्मीद है आप मुस्तकबिल में जरूर कामयाब होंगी और इसी तरह अपना इल्म आप सीखें और सिखाएं और लोगों के लिए जो है वो राह हिदायत वो बनती चली जाए। बहुत शुक्रिया आपके इस साथ का, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।
16: थैंक यू, अल्लाह हाफिज
1: जी, थैंक यू वेरी मच। ये थी हमारे साथ सना उस्मान।
17: लिसन टू समथिंग फ्रेश, लिसन टू सलाम मीडिया। It's a new beginning. It's a new era. Salaam Media. Humanitarian journalism.
18: Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi khalaqa al-khalqa liya'buduhu. Wa habbaba ilayhimu al-imana liyadhkuruhu. Wa asbagha alayhim ni'amahu zahiratan wa batinatan liyashkuruhu. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi. الذين صحبوه ونصروه إلى يوم الدين وبعد فقد قال جل وعلا في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. One of the verses recited today in Surah Hujurat, it just gives you shivers in your body. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. Allah reminds the Sahaba, the congregation of the Sahaba, the galaxy of Sahaba, that remember well, in your presence is the greatest human. Like, try to begin to process the greatness of this boon. In your midst, in your presence, in your era, in your time, in your city, in your surroundings is Allah's Nabi. In Bukhari, in the first volume, Abdullah bin Rawaha radiallahu anhu's couplets are there. وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ إِذَا انشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ إِذَا انشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ أَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. Abdullah bin Rawaha رضي الله عنه says, وفينا رسول الله. I don't know if you feel that hair standing on your body. People say, oh, it was a grand moment. Oh, we had celebrities. Oh, what a spectacle. Oh, we had drones covering the image. Oh, we had head of states who are more infamous than famous. Let me add, Wafina Rasulullah. Sahaba enjoyed the privilege that often in their discussion, there used to be a pause and they would just realize revelation is in process. What's this, my Lord? How do you begin to quantify the greatness of this moment? The whole incident of Ifk, where the accusation and the slander was leveled against Aisha radiallahu anha, right? We read today, وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. Look at the adoption of the expression of the Quran. So lamaza means to speak ill of someone on his face. And hamaza means to speak ill of someone behind his back. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. So humaza, وَيْلٌ لِكُلِّ humaza refers to مُغْتَاب. And lumaza refers to ta'an. If you know Arabic, you'll know what I'm saying. So those who speak ill of you behind your back and those who attack you in front. Allah didn't say, don't speak ill of your brother. Allah said, don't take out the faults of yourself. Don't speak ill of yourself. Because slandering your brother is slandering yourself. If I have an argument hypothetically with my brother or my sibling or my cousin, I'm not going to attack a mullah. Because I'm attacking my own surname. The Quran says, "La talmizu anfusakum." When you are attacking your brother, you're attacking yourself. And Allah says, don't mock at each other. Because you don't know who ranks at what level in the court of Allah. First, Allah gave a generic prohibition. Then what we refer to as takhsis ba'da ta'meem, specification after generalization, Allah addressed it exclusively to the woman. Ya ayyuha alladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum. Let not a group, a tribe, a people mock at another people. Why? عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ. It's highly possible the one you're mocking at is closer to Allah than you yourself. Then Allah gives an explicit prohibition. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ. And let not a woman scoff or mock or laugh or belittle another woman. Aisha radiallahu anha is the purest of the pure, is the noblest of the noble. Allah referenced her in the Quran as tayyibat. Allah referred to her as mubarra'una mimma yaqulun, exonerated from the blasphemous accusations of these people. On a particular instance, unintentionally, inadvertently, she was a human. And this is our belief and our aqeedah that the Sahaba were noble, were pure, were pious. But there were moments where they slipped and Allah forgave them. So we refer to as ismat lil anbiya. The anbiya did not sin. We refer to the sahaba as maghfoor, forgiven. The angels, they cannot sin. That's a different categories. The anbiya did not sin. The angels cannot sin. The sahaba, وَآخَرُونَ اَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Their tawbah was of such a level. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. The three sahaba who did not participate in Tabuk without any valid excuse. So there were 10 in total, not 3. People assumed there were 3. 3 were separated in the context of Tawbah. There were 10 in total. 7 came and tied themselves up to the pillar when the Prophet ﷺ returned. And that's the first verse I recited. وَآخَرُونَ اَعْتَرَفُوا. Conceding guilt. اِعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ. They conceded. خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا. They obviously had noble actions and there was the slip up. عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ. Allah will forgive them.
19: And then Allah speaks about the other three, Ka'b bin Malik, Hilal bin Umayyah, and Murara bin Rabi'. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضِ. Their regret and their remorse of the mistake created such a moment in their lives that the entire world narrowed up for them. I ask you, my brother, the crisis of the ummah, has it left you such that you cannot eat? Has it left you such that you cannot sleep? Did you ever have restlessness over your sins to a point that it created insomnia in you? Which happens to us for an interview, which happens to us for medical results that are pending, or there is some excitement or anticipation, and there is fluctuation of emotions. And of course, you become so overwhelmed by the moment, the anxiety is almost creates a paralysis in you. Has your tawbah and your regret of your sins ever created that sense of restlessness? Well, that is what Allah says was the tawbah of Sahaba. And that's what Abu Bakr Warraq has mentioned there in Madarik al-Tanzil. At-tawbatun nasuh an tadhiqa ala at-ta'ibi al-ard bima rahubat. An tadhiqa, that the earth must become narrowed upon you. When a person returns from burying a family member, nothing's got pleasure. No billboards got excitement. No food has taste in it. No amenities has attraction in it. No comfort feels, plush or welcoming. Nothing, nothing. Because you just buried someone of your own. Nothing. And I often say the way the malls of the world today are designed, enter the mall from one place and exit from another entrance or exit without engaging in commerce, business or trade. Just exit from the cemetery, feel the condition of your heart, the emotions, the regret. Your different lenses are on, you're revisiting, you're resetting your coordinates, you're asking yourself questions. You know what, you're going back to the drawing board and saying, I mean, where am I heading? What am I doing? اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کر اقبال آج زندہ روح سے کوئی وفا نہیں کرتا کل مٹی کے دیر پر کون دعا کرے گا اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کر اقبال آج زندہ روح سے کوئی وفا نہیں کرتا کل مٹی کے دیر پر کون دعا کرے گا اقبال illuminate your own grave, brighten your own grave. Today, people are not loyal to the living. You in the fantasy that your son will come make dua for you at your grave when you're dead? Well, you heard today in the Quran where Allah speaks about the criminal when he will be taken. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقُ وَشَهِيدٌ. You know when a person is shackled and then there's an officer in front and an officer at the back and he's apprehended and he's handcuffed? Well, this is what the Quran says. One in front, one at the back. Who was he? Manna'il lil khair. Manna'il lil khair is bakhil. He was one that would withhold money. He would not spend. Invest for your akhirah. Itni wafadari nakar kisi se yu madhosh hoke ghalib. Itni wafadari nakar kisi se yu madhosh hoke ghalib. یہ لوگ ایک غلطی پہ ہزاروں وفائیہ بھول جاتے ہیں. Don't give your life up for someone who will discredit all your accomplishments for one slip up. That's the world in which you live. You give your life for your kids and then you say, oh, what happened in the end? You give your wife for your better half, and I'm using it gender neutral, and then, you know, something else happens. I was once traveling from Amsterdam many years back, and this caption caught my eyes, the misery of a man. So you read it to avoid it, I guess. So what was the misery of this poor guy? He tried to surprise his wife on her anniversary, and he had her portrait, her image, tattooed on his back. Now, apart from the fact that Islamically it's not permissible, but the tattooing process, it's quite an excruciating process. And it would even cost you an arm and few legs. It's expensive on the body and the pocket. Lo and behold, that day he was going to show his wife love, see what I've done for you. She eloped with his best friend. The misery of a man. I often say, we don't take the leap to Allah, but when the creation launches us and they desert us, at least use that moment to connect with Allah. We don't initiate the walk to Allah. We don't initiate the leap towards Allah. But when people desert you and abandon you, hurt someone, and I'm not saying deliberately, but by mistake if you've hurt someone's emotions or feelings, and then see what a battle it is to get them to wipe that memory. Oh man, they'll go on like, you know what, this is an apocalypse. It's like, okay, I apologize. Yeah, but bulwanu bo agru. And what does Allah say? Ghafartuka wala ubali. Ghafartuka wala ubali. For the sake of me, I cannot translate wala ubali. I cannot. Oh my servants, if you are genuine, I'll forgive you. And I won't make a fuss about it. Wala ubali. It's fine. It's okay. Come, I'm done. It's over. I forgave you. It's over. Ansa dhalika jawarihahu. I will erase the memory of that sin from the limbs of your body. And I will delete it from the record of the angels, the narration of Targhib. Hatta yalqa Allah azza wa jalla yawm al-qiyamah wa laysa alayhi shahid. So that when you appear before Allah on the day of Qiyamah, nobody can give evidence against you. So I was saying to you, well, Surah Hujurat speaks a lot about etiquettes. Our deen is very rich with mannerism. In Arabic, they say, Kun ibn man shi'ta waqtasib adaba. Kun ibn man shi'ta waqtasib adaba. Yughnika mahmuduhu anin nasabi. You can be born anywhere and you can be part of any family. Learn values, ethics, and morals. You won't have to introduce yourself to your father's name or your country or your nationality or your language. Your values and your morals will be your introduction. Kun ibn man shi'it. You can be a child to anyone. Waqtasib adaba. Yughnika mahmuduhu anin nasabi. You don't have to speak about your ancestry and your genealogy. Sayyidina Ali radiallahu anhu used to say, إِنَّمَا الْفَتَى مَنْ يَقُولُ هَا أَنَا ذَا وَلَيْسَ الْفَتَى مَنْ يَقُولُ كَانَ أَبِي وَكَانَ جَدِّي. A young man, a person of merit and virtue, is who can stand tall on his own feet. And there's no credit and virtue to one who is running on the strength of his seniors or his predecessors. Some of us boast of our ancestors as if we're responsible for their achievements. Some of us boast about our ancestors. You know, my grandfather? Yeah, that was my dada. Yeah. The way we speak of them as if he's great because of me. The hadith is in Bukhari. Ya Fatima salini ma shi'ti min mali la ugni anki min Allahi shay'a. Fatima, tomorrow on the day of Qiyamah, you will have to have your own hisab and I will have my own hisab. So, one reflection there, we were talking on this, so I'll just progress on that. Just the Quran just amazes me. Okay, let me share another thing. The concluding verses that we recited today of the 26 Juz, Allah speaks about Qiyamah, how real it is. So, the only thing that can bring discipline to the human race in its entirety at every level is the consciousness of accountability. Remember that. That's cut and dry, absolute, non-negotiable, irrefutable. The only thing that can bring total, absolute, complete, perpetual reform to society in its entirety, in every form and sphere, is the consciousness of accountability to Allah. There was an article of a country in Africa. Well, that's what I read, but today it could apply to many other countries in the world as well. The anti-corruption unit was the most corrupt. The anti-corruption unit designed for the elimination of corruption was found to be riddled with the greatest amount of corruption. Who polices the police? Who monitors the monitor? The only thing, my brother, what are you doing in Ramadan when you are in the hammam and in the washroom? You alone and you take in a ghusl and a shower And while you're taking a shower, every little while... What drives you to this? Do the same when you're on your phone alone. Do the same to that phone. When that phone is saying, hey, talak. What does hey, talak mean? It's asma'i af'al. Asri' ilayya. Come along. I'm challenging you. I'm enticing you. I'm seducing you. Water hasn't even entered your mouth, just on the external. And you are flushing it out. You don't want to even swish it. You don't want it to get close to you. Because you know, my Allah is watching. That is why Allah said, when you cheat in your business, when you lie in your dealings, when you are fraudulent, what did Allah say? You can only do that because you forgot you have an interview with me tomorrow. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ